0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। जापान एशियाई खेलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में पहुंची और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस कार्यक्रम में सेवा यात्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और 7 अक्टूबर तक चलेगी। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की और सेवा कार्यों में हिस्सा लिया। वाराणसी और वडनगर के बीच विभिन्न स्थानों में चल रही इन मोटरसाइकिल यात्राओं का उद्देश्य युवाओं को जनसेवा और समाज से जोड़ना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को नजदीकी से समझने का अवसर प्रदान करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर तक सेवा की भावना पहुंचाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।
2: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव

0: विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे श्री अन्न यानी मिलेट्स के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहारिकता में लाया गया है।
2: भारत की पारंपरिक कृषि व्यवस्था में बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, सावा और राजगिरा सदियों से भोजन का हिस्सा रहे हैं। इन्हें श्री अन्न के नाम से आज व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाए जाने के बाद श्री अन्न को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। श्री अन्न में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये मधुमेह, मोटापा और हृदय रोग सहित कई बीमारियों में लाभकारी है। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर पुनीत सक्सेना का कहना है कि श्री अन्न ग्लूटेन फ्री है और गेहूं और चावल की तुलना में अधिक पौष्टिक है।
3: मिलेट, जिसको कि हम मोटा अनाज या श्री अन्न भी कहते हैं, और इसमें हम मोटा मोटा बात करते हैं बाजरा की, ज्वार की, रागी की। रिफाइंड सीरियल्स के मुकाबले इनमें न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है एवं ये ग्लूटेन फ्री होते हैं।
2: श्री अन्न कम पानी में उगने के कारण जल संरक्षण और जलवायु अनुकूल खेती को भी बढ़ावा देते हैं। राजस्थान में बाजरा और अन्य मोटे अनाजों की खेती पहले से ही बड़े पैमाने पर होती रही है। अब इनके उत्पादन के साथ साथ प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और बाजार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। किसानों को उन्नत किस्मों, बेहतर कृषि तकनीक और श्री अन्न आधारित उत्पादों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
4: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब यह पहल भारत में इन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कौशल, प्रौद्योगिकी और क्षमता विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
5: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन 32 गुना और एक्सपोर्ट 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
6: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। एक रिपोर्ट।
7: प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के तहत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव

0: रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और उसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित ना किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 में संशोधन के अंतर्गत रखा है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से।
2: 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के इस आयोजन में भाग लेने की उम्मीद है। इस संस्करण के साझेदार देशों में ऑस्ट्रिया, जापान, रूस, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम शामिल हैं। इसके अलावा व्यापार और उद्योग में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हुए करीब 300 महिला प्रतिनिधि भी आयोजन में भाग लेंगी। प्रदर्शनी में कृषि, ऑटोमोबाइल, रक्षा, आईटी, स्वास्थ्य, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष का एक प्रमुख आकर्षण एक जिला एक व्यंजन पहल की शुरुआत है। इसे एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन में ज्ञान सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अंकित कुमार के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में इस सेवा की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 वर्ष से बंद सार्वजनिक बस सेवा अब फिर से शुरू की जा रही है।
3: सेवा संकल्प सप्ताह के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार 21 साल बाद वापस लोक परिवहन की बस सर्विसेज की सेवा शुरू करने जा रही है। ये अपने आप में यूनिक मॉडल है। आधुनिकतम नई तकनीकी ई बस सेवा से लगा करके सभी प्रकार की सर्व सुविधाएं, सभी प्रकार की बसें चरणबद्ध रूप से लगभग हर नगर, हर जिला तक हम अपने नीचे तक नेटवर्क ले जाने वाले हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल का अंत्योदय का दर्शन आज भी जनकल्याण और राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरणा देता है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और इससे सटे दक्षिण ओडिशा के ऊपर बना गहरा दबाव अब कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओडिशा के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी है।
4: कमजोर पड़े डिप्रेशन के असर से दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। राज्य सरकार के अनुसार दर्जनों ब्लॉक और गांवों में बारिश का असर देखा गया है और 8000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बालेश्वर जिले के मथानी में जलका नदी में बाढ़ की गंभीर स्थिति है और बस्ता के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने उड़ीसा में बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया है। अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में आपदा प्रतिक्रिया टीमों को अलर्ट पर रखा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: और अब जापान में जारी एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
5: जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के लिए दमखम आजमा रहे हैं। कमलजीत और सुरचित सिंह की जोड़ी ने आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने क्वालिफाइंग राउंड में पहला स्थान हासिल किया। वहीं कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: और फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष शतरंज टीम ने कल समरकंद में अजरबैजान के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
6: धन्यवाद मुकेश।
0: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी मंत्रालयों से 5 वर्ष की आगामी रूप

0: भारत के खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
1: ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೀಗ ಕೇಳಿ ರೇಡಿಯೋ ವರದಿ. ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026 ಕುರಿತು
0: ಕಮಲ್ ಜೀತ್ ಔರ್ ಸುರುಚಿ ಸಿಂಗ್ ನೆ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಟೀಮ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮೇ ಫೈನಲ್ ಮೇ ಶಾನದಾರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕ್ಯಾ ಉನ್ನೊನ್ನೆ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ಜೀತ್ ಕರ್ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ 2026 ಮೇ ಭಾರತ ಕಾ ದೂಸರಾ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ಹಾಸಿಲ್ ಕರ್ ಲಿಯಾ ಹೈ ಉನ್ಕಾ ಅಂತಿಮ ಸ್ಕೋರ್ 484.6 ರಹಾ ಜೊ ದೂಸರೆ ಸ್ಥಾನ ಪರ್ ಹೈ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಸೆ 6.6 ಅಂಕ ಅಧಿಕ ರಹಾ ಥಾ ಇರಾನ್ ನೆ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಕಾಂಸ್ಯ ಪದಕ ಅಪ್ನೆ ನಾಮ್ ಕಿಯಾ.
2: Ji, thank you so much, Shahid. And the other good news that comes this morning is once again from the world of shooting, dosto. Indian men in the 50-meter rifle, 3 positions, have also secured the silver for India. But a very strong performance with Aishwarya Pratap Singh Tomar finishing third with 589, Neeraj Kumar stood fourth with 588, aur Rudraksh Balasaheb Patil finished ninth with 585. Bharat ka total score iske saath ban gaya tha 1762, yani 1762, which earned them the silver medal. China took away the gold with 1766 points, led by Zhang Changgong's 593, jo apne aap mein ek naya qualification games record hai. Aur iske saath aapko ye bhi bata de ki ab ऐश्वर्य प्रताप सिंह और नीरज कुमार वापस से आज सुबह हमें 10:30 बजे मैदान में दिखेंगे प्लेइंग द इंडिविजुअल फाइनल्स इन द इंडियन मेन 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस.
0: साक्षी, एक और पदक के बारे में अपने श्रोताओं को बता दें, टेबल टेनिस के मिक्स डबल्स इवेंट में मनुषा और दिया चितले ने भारत का कांस्य पदक पक्का कर दिया है. भारतीय जोड़ी ने हांगकांग के वोंग चुंग टिंग और हु डुई केम को हराकर जो सेमीफाइनल मुकाबले में जगह बना ली है. वहीं एक अन्य मिश्रित युगल क्वार्टर फाइनल में हरमीत देसाई और यशस्विनी घोरपड़े को चीन के लिन थिंगडोंग और कुमेन से हार मिली है.
2: जी, स्क्वाश की दुनिया में भी आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आज हम आ रहे हैं, बिकॉज स्क्वाश में भी भारत को एक मेडल यानी ब्रॉन्ज मेडल तो कम से कम अश्योर हो ही चुका है. जोशना चिनप्पा विल बी हैविंग अनदर एशियन गेम्स मेडल 16 इयर्स आफ्टर विनिंग हर फर्स्ट. द 40-year-old पार्टनरिंग विद वी सेंथिल कुमार स्टॉर्म्ड इनटू द semi-finals with a straight game win over their Filipino opponents 11-3, 11-5. Joshna and V. Senthil Kumar will now be facing Hong Kong's Lee Ka Yee and Tang Ming Hong in the semi-finals tomorrow, thereby assuring India of at least a bronze medal in the match.
0: साक्षी, अब चलते हैं हॉकी के मैदान पे. भारत ने जापान को 3-1 से करारी शिकस्त दे दी और एशियाई था उसे जारी रखा है. लाल रिम श्यामी ने पहला गोल किया, जिसके बाद इश्का ने भारत की जो बढ़त थी उसको दोगुना कर दिया. इसके बाद नवनीत कौर ने तीसरा गोल दाग दिया. कोबायाकावा शिको ने अंतिम क्वार्टर में जापान के लिए एक गोल दागा, लेकिन भारत ने अपनी बढ़त को बरकरार रखते हुए आसानी से जीत हासिल कर ली है.
2: जी शायद, थैंक यू सो मच. एंड द नेक्स्ट अपडेट इज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन, जहां हमारे भारतीय शटलर्स ने हमें फिर से एक बार आज सुबह खुशखबरी ही दी है, बिकॉज इंडियाज इंडिविजुअल बैडमिंटन कैंपेन at the Asian Games got underway with Dhruv Kapila and Tanisha Krasto taking on Maldives' Aminat Abdul Razak and Nibal Ahmed in the mixed doubles. The Indian pair made a dominant start, comfortably taking the opening game 21-8. Iske baad jo dusra game tha usko bhi hamare dono hi bhartiya shuttlers ne apne naam kar liya 21-7 se, thereby winning the match in straight games 2-0. Shahid.
0: Ji haan, ek athletics ki khabar de dete hain. Mahila heptathlon mein long jump mein Anamika Anish छठे स्थान पर है. कोई अच्छी खबर नहीं, पूजा 10वें स्थान पर रही. ओवरऑल स्टैंडिंग में अनामिका 7वें और पूजा 9वें स्थान पर रही थी.
2: जी, और फेंसिंग की दुनिया से आपके लिए थोड़ी सी निराशाजनक खबर लेके आएंगे, बिकॉज इंडिया हैव बीन पुट ऑन द बैक फुट अर्ली इन द मेंस टीम फॉइल राउंड 16 टाई अगेंस्ट हांगकांग एट द एशियन गेम्स. सचिन बिगैन विद द 2-5 लॉस टू चुन चोय बिफोर हिमश सिंह वेंट डाउन 3-5 इन द सेकेंड रिले, लीविंग इंडिया 5-10 बिहाइंड. वहीं पर आदित्य देन गेव इंडिया सम होप विद द 6-5 विक्ट्री ओवर का लॉन्ग च्योंग, रिड्यूसिंग द डेफिसिट टू 4 points at 11-15. However, to find enough touches in the next relay with Hong Kong extending their advantage to 19-12. So ab Bharat ke liye ek uphill aur bahut hi mushkil task hai to fight back into this event,

0: क्योंकि आगे और भी रिलेज दोस्तों आज के दिन में आने वाले हैं।
1: जी चलते चलते क्योंकि 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक हीट में धनुष सुरेश क्वालिफाई नहीं कर पाए। पुरुषों की 400 मीटर फ्री स्टाइल हीट में दक्षिण शशि कुमार और अनिश सुनील भी, वहीं पुरुषों की 200 मीटर बैक स्ट्रोक में ऋषभ दास और उत्कर्ष पाटिल ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है।
0: यस इंडीड, ये सारे अपडेट्स हम आपके लिए इस समय सुबह 9:30 बजे लेकर आए थे, लेकिन जाने से पहले आपको एक और खुशखबरी दे दे, छोटी सी है लेकिन है तो खुशखबरी कि भारत मेडल टेबल में भी इस समय अब 15 स्टैंड से 12th पोजीशन पर आ चुका है। जी हां, 12वें स्थान पर अब भारतीय टीम आपको मेडल टेबल में दिखेगी। कुल मिलाकर भारत के पास इस समय 18 मेडल हो चुके हैं, एक गोल्ड जो और एड हो गया है आज सुबह शूटिंग की दुनिया से, उसकी बदौलत अब भारत के पास है 2 गोल्ड 7 सिल्वर which puts India on the table at the 12th position presently. उम्मीद करते हैं कि ये खुशियों का जो सफर है जारी रहेगा भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से। फिलहाल के लिए मोहम्मद शाहिद और मुझे साक्षी को दीजिए इजाजत। हम मिलेंगे आपसे सुबह के 10:30 बजे एक बार फिर से with all the live updates from the ongoing Asian Games 2026. Goodbye for now.
2: ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026 ಇದರ ಕುರಿತಾದಂತಹ ರೇಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್.

0: साथ ही सचिन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब उनके सामने जापान के शुंसुके किटामोतो की चुनौती होगी, जो विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता रह चुके हैं।
1: राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शाहिद जी। मूविंग ऑन, आई वाज जस्ट लुकिंग एट द अपडेट आल्सो ओवर हियर, बट अनाहत सिंह इन द वुमेन सेमीफाइनल। हम स्क्वाश की पहले बात कर लेते हैं। अनाहत सिंह मेड शॉर्ट वर्क ऑफ कंपैट्रिट तन्वी खन्ना, डिफीटिंग अ 3-0, 11-2, 11-5, 11-3 इन जस्ट 15 मिनट्स टू रीच द वुमेन सिंगल सेमीफाइनल्स। द 18-year-old डोमिनेटेड द कॉन्टेस्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, कंफर्टेबली गेटिंग पास्ट अ 30-year-old अपोनेंट। अनाहत विल फेस जापान सतोमी वनटोबे इन द सेमीफाइनल। द जापानीज प्लेयर इज वर्ल्ड नंबर 6 एंड वन ब्रॉन्ज एट द 2022 ह्वांगजू एशियन गेम्स। और आपको यह भी बता दें कि लेटेस्ट अपडेट में भारत के वीर चौधरानी मोहम्मद इरफान से मेन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स में 3-1 से हार गए हैं। वेल इट वाज ही वाज ऑलरेडी हैविंग अ वेरी टफ टाइम, द स्कोर लाइन रीडिंग 11-6, 8-11। और आगे भी अगर बात करें तो सिर्फ पहला ही वो सेट जीत पाए थे, उसके बाद के वो तीनों हार गए। इट वाज लुकिंग दैट ही वुड बी लूजिंग द गेम एंड प्रीटी मच दैट सम्स अप द मेन सिंगल्स। और शुरुआती दिन में आज हमने ये भी देखा कैसे स्क्वाश में जोशा चिनप्पा ने भी एशियन गेम्स में एक मेडल भारत के लिए अशोर करवा दिया है। 16 साल के बाद जब उन्होंने अपना यहाँ पे उम्मीद रखेंगे वैश्य बी विनिंग द 40-year-old पार्टनरिंग बी सेंथिल कुमार स्टॉर्म्ड इनटू द मिक्स्ड डबल स्क्वाश सेमीफाइनल्स विद अ स्ट्रेट गेम विन ओवर द फिलिपिनो ओपोनेंट्स 11-3, 11-5। द विक्ट्री अशोर्स इंडिया ऑफ एटलीस्ट अ ब्रॉन्ज मेडल इन द इवेंट। आपको ये भी बता दें कि अभय सिंह मेड क्विक वर्क ऑफ जापान्स रियोनसुके त्सुकिकी, बीटिंग हिम 3-0 इन जस्ट 30 मिनट्स टू रीच मेन सिंगल्स सेमीफाइनल। अभय कुड फेस कंपैट्रियट वीर चौटरानी इन द लास्ट फोर इफ वीर गेट्स पास्ट पाकिस्तान मोहम्मद इरफान, जो कि अब दोस्तों आपको बता दें होने वाला नहीं है, क्योंकि वीर चौटरानी मेन सिंगल्स का क्वार्टर फाइनल मोहम्मद इरफान से हार चुके हैं। लेकिन उम्मीद यहां पर करेंगे कि अभय आगे अपने नेक्स्ट राउंड में भी प्रवेश करके भारत को भी अभय सिंह मेडल दिलवा सके शायद।
0: साक्षी, शूटिंग से जैसा कि सुबह दो अच्छी खबर आई थी, लेकिन यहां पर एक और फाइनल मुकाबला खेला गया जहां अच्छी खबर नहीं है। शूटिंग 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में जो फाइनल मुकाबला था, वहां भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों के 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन के फाइनल में 327.6 अंकों के साथ पांचवां स्थान हासिल किया। वहीं नीरज कुमार 299 के अंक के साथ आठवें स्थान पर है। इस वर्ग में चीन के नाम गोल्ड और सिल्वर यानी दोनों पहले दो पदक रहे, जबकि ब्रॉन्ज कजाकिस्तान के निशानेबाज ने अपने नाम किया।
1: राइट, एंड गिवन बाय हाउ गुड मोहम्मद इरफान लुक्ड इन द मेंस क्वार्टर फाइनल राउंड, मेंस सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स एंड स्क्वाश, वी विल हैव टू वेट एंड वॉच एज टू हाउ इट टर्न्स आउट इन द सेमीफाइनल्स फॉर अभय सिंह इन स्क्वाश अप अगेंस्ट मोहम्मद इरफान। लेकिन अब मूव करेंगे बैडमिंटन की तरफ भी, जहां उन्नति हुडा बिगान एशियन गेम्स कैंपेन ऑन अ विनिंग नोट, डिफीटिंग नॉर्थ कोरियाज जी मी सोंग 21-9, 21-10 इन स्ट्रेट गेम्स। उन्नति विल नाउ बी फेसिंग मलेशियाज वोंग लिंगचिंग इन द नेक्स्ट राउंड। हमने आज दिन की शुरुआत में एशियन गेम्स में देखा किस तरह से भारत के इंडिविजुअल बैडमिंटन कैंपेन किसकी जो शुरुआत हुई एशियन गेम्स में, उसमें ध्रुव कपिला और तनीशा क्रास्तो ने मालदीव के अमिनात अब्दुल रजाक और निबल अहमद को मिक्स डबल्स में किस तरह से उन्होंने प्रवेश करके हरा दिया। दे वेंट ऑन टू डिफीट देयर मालदीव अपोनेंट्स इन स्ट्रेट गेम्स, विनिंग द एंटायर मैच 2-0 वेरी कन्विंसिंगली एंड कमांडिंगली, द स्कोर लाइन बीइंग 21-8, 21-7।
0: अब एथलेटिक्स की बात कर लेते हैं। एथलेटिक्स में महिला एथलॉन में भाला फेंक इवेंट में अनामिका अनीश ने 10वां जबकि पूजा ने 6ठा स्थान हासिल किया। कुल स्कोर के आधार पर अनामिका 8वें और पूजा 9वें स्थान पर रही। अब दोनों के सामने एक स्पर्धा बाकी है। दोस्तों को बता दें हेप्टथलॉन होता क्या है। हेप्टथलॉन महिलाओं की दो दिवसीय संयुक्त एथलेटिक्स प्रतियोगिता है, जिसमें खिलाड़ियों को 7 अलग अलग स्पर्धाओं में प्रदर्शन करना होता है। पहले दिन 100 मीटर बाधा दौड़, ऊंची कूद, शॉटपुट और 200 मीटर दौड़ होती है, जबकि दूसरे दिन लंबी कूद, भाला फेंक और 800 मीटर दौड़ के साथ प्रतियोगिता पूरी होती है। हर स्पर्धा के प्रदर्शन के आधार पर अंक मिलते हैं और सभी 7 स्पर्धाओं में कुल अंकों के आधार पर विजेता तय होता है।
1: राइट, और जाने से पहले आपको दोस्तों ये भी बता दें कि इस समय मेडल टेबल में भारत कैसे स्टैंड कर रहा है। मेडल टेबल में भारत की पोजीशन है 12th। कुल मिलाकर भारत के पास हो गए 19 मेडल्स, जिसमें से 2 गोल्ड आ चुके हैं, 1 क्रिकेट की बदौलत, महिला क्रिकेट की बदौलत, और 1 हमारी शूटिंग की बदौलत। 8 सिल्वर है और 9 ब्रॉन्ज है। अब यही उम्मीद है कि भारत अपने प्रदर्शन को और बेहतर करता जाए समय के साथ साथ, दिनों के साथ साथ। लेकिन देखते हैं ये सफर भारत के लिए कैसे पैन आउट होने वाला है। फिलहाल मुझे यानी साक्षी मांडवाल और मोहम्मद शाहिद आजमी को दीजिए इजाजत। हम आपके साथ दोस्तों एक बार फिर से सारे लाइव अपडेट्स के साथ जुड़ेंगे दोपहर के 12:30 बजे आकाशवाणी के माध्यम से। फिलहाल के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಫ್ಎಂ ರೇನ್ಬೋ 101.3 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ಯೋರ್ಸ್।
1: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताज़ा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं साक्षी मांडवाल। तो चलिए इस घंटे की अपडेट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं टेबल टेनिस की, जहां मानुष शाह ने टेबल टेनिस में शानदार प्रदर्शन करते हुए ईरान के बेंजामिन फराजी को सीधे 4 गेमों में 4-0 से हरा कर तीसरे दौर में जगह बना ली है। मानुष ने मुकाबले की शुरुआत दमदार अंदाज में की और पहला गेम 11-9 से अपने नाम कर लिया। उसके बाद लय बरकरार रखते हुए दूसरे गेम में 11-6, तीसरे गेम में 11-6 और चौथे गेम में 11-5 से जीत दर्ज की। लगातार 4 गेम जीतकर मानुष शाह ने मुकाबले पर पूरी तरह से अपना दबदबा बनाए रखा और अगले दौर में जगह बना ली है।
2: जी थैंक यू सो मच शाहिद। और अगला अपडेट हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए कबड्डी की दुनिया से, जहां वुमेन एंड मेन बोथ ऑफ देम हैव गिवन रीजन फॉर द इंडियंस टू नाउ स्टैंड प्राउड, बिकॉज महिला के कबड्डी मुकाबले में हमने देखा भारत ने नेपाल को सेमीफाइनल मुकाबले में बड़ी आसानी और कन्विंसिंग तरीके से 48-24 से हरा कर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली है। वहीं पर अगर मेन्स सेमीफाइनल की बात करें तो भारतीय मेन्स कबड्डी टीम ने भी अपना मुकाबला आसानी से जीत लिया थाईलैंड से विद अ स्कोर लाइन दैट रेड 66-28। फर्स्ट हाफ में भारत ने 37-18 से लीड बनाई और दूसरे हाफ में उन्होंने 29-10 से लीड बनाई एंड एज अ रिजल्ट द टोटल स्टूड टू 66-28 इन द मेन्स सेमीफाइनल एंड thereby both the Indian teams have now booked their place in the finals of the ongoing Kabaddi in the Asian Games 2026।
1: साक्षी फेंसिंग की बात कर लेते हैं। भारतीय महिला ईपी टीम को राउंड ऑफ 16 में हार का सामना करना पड़ा है। उज्बेकिस्तान ने कड़े मुकाबले में भारत को शिकस्त देकर अगले दौर में जगह बना ली है। वहीं सर्फिंग की एक खबर दे देता हूं। सर्फिंग में महिला शॉर्टबोर्ड राउंड 1 में भारत की सुगर शांति गोयन ने कमाली प्रकाश अपने अपने हीट में सबसे निचले स्थान पर, यानी यह दो खबरें हैं लेकिन दोनों में कुछ खास भारत के लिए नहीं है।
2: वेल कुछ ऐसा ही समा फिलहाल मैं भी आगे लेके जाने वाली हूँ, बिकॉज ई स्पोर्ट्स और इक्वेस्ट्रियन की दुनिया से भी मेरे पास कुछ खास वेलकमिंग या फिर वो स्माइलिंग न्यूज नहीं आ रही है। दोस्तों ई स्पोर्ट्स में भारत ने अपना मुकाबला साउथ कोरिया से 0-2 वो पोकेमोन यूनाइट में हार गए। साउथ कोरिया कंप्लीटली डोमिनेटेड एंड अबॉलिश्ड द इंडियन टीम इन स्ट्रेट सेट्स, विनिंग द फर्स्ट वन 1-0 एंड द सेकंड वन आल्सो make it a straight win of 2-0. Equestrian के अंदर इंडिया who had won gold in team dressage last edition में आपको याद दिला दे, इस बार भारत ने चौथे स्थान पर समाप्त किया है behind China, Japan और कोरिया। भारत के कुल मिलाकर जो अंक बने थे वो थे 201.971 points, जिसमें श्रुति ने 68.059, हृदय ने 67.353 और जय ने 66.559 के स्कोर्स के साथ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। ये तीनों भारत के लिए टॉप थ्री स्कोरर्स बने। गौरव जिन्होंने 65.794 का कंट्रीब्यूशन दिया था वो क्योंकि चौथे स्थान पर थे इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन इस टोटल के अंदर काउंट नहीं किया गया।
1: फेंसिंग की बात कर लेते हैं साक्षी। फेंसिंग में पुरुषों की टीम फाइल स्पर्धा में राउंड ऑफ 16 में भारत को हांगकांग के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही जो फाइल जो स्पर्धा है उसमें भारत की चुनौती समाप्त हो गई है।
2: राइट एंड अ क्विक अपडेट नाउ कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्क्वॉश, वेयर वी कैन गिव यू सम गुड न्यूज, बिकॉज सबसे पहले आपको बताते हैं कि जोशना चिनप्पा हैज अनदर एशियन गेम्स मेडल 16 इयर्स आफ्टर विनिंग हर फर्स्ट, बिकॉज शी विल नाउ बी कमिंग अप विद द 40-year-old पार्टनरिंग बी सेंथिल कुमार स्टॉर्मिंग इन टू द मिक्स डबल स्क्वॉश सेमीफाइनल विद अ स्ट्रेट गेम विन ओवर द फिलिपिनो ओपोनेंट्स 11-3, 11-5। दिस विक्ट्री अशोर्स इंडिया ऑफ एटलीस्ट अ ब्रॉन्ज मेडल इन द इवेंट। Joshna and B. Senthil Kumar will now face Hong Kong's Lee Ka Yee and Tang Ming Hong in the semi-finals tomorrow. तो यहाँ से भारत को एक पदक तो अब जरूर मिलेगा। वहीं अभय सिंह made quick work of Japan's Runsuke Sukui, beating him 3-0 in just 30 minutes to reach the men's singles semi-finals. और आपको बता दे कि पहले ये बात हो रही थी कि अभय सिंह का शायद आमना सामना semi-final में भारतीय opponent के साथ ही हो सकता है, लेकिन ऐसा plan नहीं था क्योंकि वीर चतुर रानी अपना मुकाबला मेंस सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल्स में मोहम्मद इरफान जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनसे हार गए 1-3 और इसीलिए अब अभय का आमना सामना सेमीफाइनल्स में होगा पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान के साथ। और अनाथ सिंह उनके बारे में भी आपके लिए कुछ खबर लेके आ रहे हैं स्क्वाश की दुनिया से, जहां अनाथ सिंह मेड शॉर्ट वर्क ऑफ कंपैट्रियट तन्वी खन्ना डिफीटिंग अ 3-0 विद द स्कोर लाइन दैट रेड 11-2, 11-5, 11-3 इन जस्ट 15 मिनट्स टू रीच द वुमेन्स सिंगल सेमीफाइनल। 18 24-year-old also dominated the contest from the start to finish. She will now be facing Japan's Satomi Watanabe in the semi-final.
1: चलते चलते साक्षी हॉकी की खबर बता दे, जहां भारत ने जापान को 3-1 से हराकर एशियाई खेलों में अपनी जीत का जो सिलसिला था जारी रखा है। महिलाओं की बात हो रही महिला हॉकी की, जहां लाल रिम श्यामी ने पहला गोल किया, जिसके बाद इश्का ने भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया। वहीं नवनीत कौर ने तीसरा गोल दागा, कोइबाकावा शिको ने अंतिम क्वार्टर में जापान के लिए एक गोल जरूर दागा, लेकिन ये गोल कोई खास उनके लिए काम नहीं आया। भारत की जो बढ़त थी वो बनी नहीं और भारत ने आसानी से शिकस्त देते हुए यहां पर जीत दर्ज कर ली है।
2: राइट, एंड ऑन दैट नोट दोस्तों, अभी के लिए हमारा सफर यहीं पर आकर समाप्त होता है। इस एक बार फिर से दोपहर के 1:30 बजे जुड़ेंगे सारे लाइव अपडेट्स लेकर फ्रॉम द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। अभी के लिए मुझे साक्षी मांडवाल और मेरे साथ मोहम्मद शाहिद आजमी को दीजिए इजाजत। दोपहर 1:30 बजे एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे। गुड बाय।

0: ಇದು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾತು. ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ. ಆವ ಗಾಳಿ ಅದಾವ ಧೂಳ್ಕಣವ ಪತ್ತಿ ಹುದೋ, ಆವ ಧೂಳಿನೊಳು ಆವ ಚೈತನ್ಯ ಕಣವೋ, ಜೀವವಿಂತು ಅಜ್ಞಾನ ಸೂತ್ರದಾಟದ ಬೊಂಬೆ. ಭಾವಿಸು ಆ ಸೂತ್ರಗಳ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಆವ ಗಾಳಿ ಆವ ಧೂಳ್ಕಣವ ಪತ್ತಿ ಹುದೋ, ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ, ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಧೂಳು ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಯಾವ ಧೂಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಣ ಇದೆಯೋ ಯಾರಿಗೊತ್ತು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಯಾವ ಧೂಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಣ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆವ ಧೂಳಿನೋಳು ಯಾವ ಚೈತನ್ಯ ಕಣವೋ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧೂಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಧೂಳಿ ಕಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚೈತನ್ಯ ಇದೆಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೀವವಿಂತು ಅಜ್ಞಾನ ಸೂತ್ರದಾಟದ ಬೊಂಬೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವ ನಡೆದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅಜ್ಞಾನ ಸೂತ್ರದ ಆಟದ ಬೊಂಬೆ. ಯಾವುದೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಥ ಜ್ಞಾನದ ಸೂತ್ರದ ಆಟದ ಬೊಂಬೆ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಭಾವಿಸು ಆ ಸೂತ್ರಗಳ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧೂಳು ಕಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪಾರಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಡೀ ಪರಮಾಣು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಣ, ಒಂದು ಪರಮಾಣು, ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂಥ ಪರಮಾಣು, ಆದರೆ ಪರಮಾಣುನಿಂದ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಚೈತನ್ಯ ಕಣ, ಆ ಧೂಳಿನ ಚೈತನ್ಯ ಕಣ ಯಾವ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿದೆಯೋ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೂತ್ರದ ಆಟದ ಬೊಂಬೆ, ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋ ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
1: ಕಗ್ಗದ ಸಿರಿ, ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದ ವಾಚನ ಗಾಯನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೂ ವಾಚನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಸಾದರ್, ಗಾಯನ ಎಸ್ ಅನುಪಮ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಿಗಿ, ಸಂಯೋಜನೆ ಎಂ ಜಿ ಸಿ ಹರ್ಷನ್, ಎ ಬಿ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಟಿ ವಿ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್.
2: And a very warm welcome to all the listeners of Akashwani. I am Sakshi Manwal. And dosto, mere saath is samay yahan maujood hai Mohammad Shahid Azmi. Ghadi mein bajne dopahar ke 1:30. Hum lekar aa gaye aapke liye the live updates of the ongoing Asian Games. Yeah, sabse pehla update aapko dene wale hai table tennis ki duniya mein, jahan women's doubles ke humne aaj muqable dekhe, lekin usme kuch khaas achhi khabrein nahi hai mere paas aap sabko dene ke liye, kyunki women's doubles ka jo pehla muqabla hua usme Shreeja Akula aur Cinderella Das did try to put up a fight against Man Kuai and Wang Manu, but ultimately their opponents were just too good for them, and as a result Shreeja Akula aur unke sath sath Cinderella Das lost the game 3-0. Matlab bahut hi dominating a confident jeet samne se unke opponents ne aaj Shreeja Akula aur Cinderella Das ke upar hasil kari. Dusri taraf Yashaswini Ghorpade and Diya Chitale lost 0-3 to China's Wei Chen and Shuhan Fan. The Indian pair went down 7-11, 5-11, 8-11 with the Chinese duo taking control early in the third game and opening up an 8-11 lead before India tried to fight back, but it was just too late. Aur din ki shuruaat mein humne dekha tha ki kaise Manu Shah also got the job done against Iran's Benjamin Faraji, sealing a convincing 4-0 victory. That was a good news that came around in table tennis. Aur uske sath sath, lekin uske baad aur koi good news humne mili nahi thi. We had the mixed doubles pair of Manav and Manush, who lost to Harimoto and Shinozuka of Japan. Then Yashaswini Ghorpade defeated Hen Zaza to reach the round of 16 in Asian Games. And the other thing was that Harmeet and Yashaswini were knocked out in the mixed doubles quarterfinals. Big news that came in was that Jia Chitale and Manu Shah who have stormed into the mixed doubles semi-finals, jiska mukabla ab kal hoga hopefully. And yahan par umeed kar sakte hain ki Bharat ko shayad ek padak apne naam mile, lekin it's going to be still too early shayad to even say that.
3: Idhar badminton ki baat kar lete hain Sakshi. Badminton mein zabardast romanchak mukabla chal raha hai. Bharat ka जो सबसे मजबूत जोड़ी भारत की है वो उतर चुकी है. हालांकि मुकाबला अभी बराबर चल रहा है एशियन गेम्स का. भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना थाईलैंड के पकापोन टिरास्कुल और पिराचाई सुपकुंत के बीच हो रहा है. भारतीय जोड़ी ने मुकाबले की शुरुआत शानदार अंदाज में की और पहला गेम 21-12 से अपने नाम किया. हालांकि दूसरे गेम में थाई जोड़ी ने जोरदार वापसी की और 21-19 से गेम जीतकर मुकाबले को 1-1 की बराबरी पर ला दिया है. अब निर्णायक तीसरा गेम जारी है जहां दोनों जोड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. हालांकि अभी थाईलैंड की जोड़ी ने 11-9 से बढ़त बना रखी है.
2: राइट, हॉकी की दुनिया से आपको थोड़ी खुशखबरी दे सकते हैं, बिकॉज भारतीय महिलाओं का मुकाबला हुआ जापान की महिलाओं के साथ, जहां भारत ने उनको 3-1 से, यानी जापान को 3-1 से हरा दिया इन द एशियन गेम्स। लालरिम सियामी और ओपन द स्कोरिंग बिफोर इशिका डबल्ड इंडियाज लीड विद नवनीत कौर एडिंग द थर्ड गोल। कोबाई खावा शीहू पुल्ड वन बैक फॉर जापान इन द फाइनल क्वार्टर, बट इंडिया हेल्ड ऑन कंफर्टेबली टू सील द विन। ये जरूर कह सकते हैं कि इससे पहले के मुकाबले जो हमने भारतीय महिलाओं के देखे हॉकी के अंदर, उसमें काफी ज्यादा गोल्स करके भी भारतीय महिलाएं जीती, और शायद इस मैच में आपने उसकी कमी जरूर महसूस करी हो, लेकिन जीत तो भारत के नाम ही दर्ज हो गई। और अब भारत का एक और पूल मैच है सिंगापुर के खिलाफ, और उसके बाद भारत को आप खेलते हुए देखेंगे सेमीफाइनल्स में इन द ऑन गोइंग एशियन गेम्स इन द विमेंस हॉकी मैच।
3: महिलाओं की बात आपने की, तो यहाँ डबल्स की, मैं मिक्स डबल्स की बात करना चाहूंगा। बैडमिंटन की खबर है, भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा करस्टो का मुकाबला मलेशिया के शेवन जेमई लाई और सून हुआट गो के बीच जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 22-20 से जीतकर मुकाबले में बढ़त बनाई, लेकिन दूसरा गेम बेहद कड़ा चल रहा है। दोनों के बीच में जो मुकाबला है, दूसरा गेम जो है 21-21 मुकाबला जारी है। यहां पर देखना होगा क्या भारतीय जोड़ी इस गेम को जीतकर मुकाबले को अपने नाम कर पाती है, आने वाला कुछ समय ही बता दे।
2: की दुनिया से भी आपको अपडेट देते थे कि जहां हमने पिछली बार देखा था कि भारत की टीम ने गोल्ड हासिल किया था टीम रिसर्च के ये लास्ट एडिशन में, वहीं अब इस बार भारत ने चौथे स्थान पर फिनिश किया है बिहाइंड चाइना जापान कोरिया। प्रीटी डिसअपॉइंटिंग न्यूज, भारत का टोटल रहा था 201.97 पॉइंट्स एंड एज अ रिजल्ट इट वॉज जस्ट नॉट इनफ फॉर द इंडियन इक्वेस्ट्रियन प्लेयर्स टू इवन स्टैंड इन कॉम्पिटिशन विद द अदर कंट्रीज। शायद
3: जिस खबर की मैं बात कर रहा था उसमें कुछ थोड़ा सा डेवलपमेंट हुई है, भारतीय जोड़ी 23-22 से यहाँ पर जो दूसरा गेम है वहाँ आगे है, लेकिन अभी भी मुकाबला जारी है। बात सर्फिंग की कर लेते हैं, यहाँ से भी कुछ, हालांकि बहुत अच्छी खबर नहीं, फिर भी जो आपको अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा जो सर्फिंग से खबर है, किशोर कुमार ने हीट जीतकर दूसरे दौर में जरूर जगह बना ली है। भारत के किशोर कुमार ने 9.33 के स्कोर के साथ अपनी हीट में पहला स्थान हासिल किया और दूसरे दौर में जगह बनाई। उनका जो अगला मुकाबला कल होने वाला, यानी कल उनकी असली परीक्षा होनी है।
2: जी, और चलने से पहले आपको एक खुशखबरी के नोट पे ही छोड़ेंगे, बिकॉज आज के दिन की शुरुआत बहुत अच्छी खबरों के साथ हुई थी। शूटिंग की दुनिया से हमें गोल्ड और सिल्वर दोनों ही मेडल्स के बारे में पता चला, बिकॉज इन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट कमलजीत एंड सुरजी सिंह ब्रॉट अस द लॉरेल्स बाय गेटिंग इंडिया द कवेटेड गोल्ड। और इंडियन मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन में हमारे भारतीय शूटर्स ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार और रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने भारत को सिल्वर मेडल दिलवाया था। वहीं अगर हम बात करते हैं स्क्वॉश में भी, तो स्क्वॉश में मिक्स डबल्स के इवेंट के जो सेमीफाइनल्स कल घटित होने वाले हैं, उसमें हम ये उम्मीदें रख सकते हैं कि हमें अब, यानी भारत को मेडल डेफिनेटली अश्योर हो चुका है। इसके साथ ही मुझे साक्षी मांडवाल और मोहम्मद शाहिद आजमी को अभी के लिए दीजिए इजाजत। हम आपसे एक बार दोपहर 3:30 बजे दोबारा जोड़ेंगे विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। फॉर नाउ इट्स गुड बाय एंड टेक केयर।
4: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।

0: और संवाद आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही सात सूत्रों को आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक रिपोर्ट।
2: पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान विचारक, दार्शनिक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्नातक की पढ़ाई के दौरान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संपर्क में आए और आरएसएस के प्रचारक बन गए। प्रचारक बनने से पहले उन्होंने वर्ष 1939 और 1942 में संघ में प्रशिक्षण लिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि तेजी से परस्पर जुड़ती दुनिया में उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान अलग थलग रहकर नहीं किया जा सकता। श्री राधा कृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक सहभागिता कार्यक्रम के चौथे संस्करण के प्रतिभागियों से संवाद में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत 7.8% की विकास दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने ये बात कही। श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और सक्रिय शासन की मदद से आज उत्तर प्रदेश में आकर्षक निवेश वातावरण बना है।
3: उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश लक्ष्य तय कर सकता है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। इस प्रदर्शनी में कई व्यापारिक समझौते भी होने वाले हैं। दुनिया भर से आए हुए खरीदार यहाँ मौजूद है और इससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, उत्पादन और बिक्री तीनों क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य देश में विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में भाग लिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। नई दिल्ली में आज आरोग्य मंथन 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कारण अब 90% कैंसर मरीजों का इलाज 30 दिन के अंदर शुरू हो रहा है। श्री नड्डा ने नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रजिस्ट्री मोबाइल ऐप और सिक्योर डेटा एनवायरनमेंट एप्लीकेशन भी शुरू किए। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2500

0: 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी।
1: ये रेलगाड़ी समाखियाली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, बरेली, इज्जतनगर और पीलीभीत सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशन पर रुकेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि भुज से बरौनी के लिए सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार को, जबकि बरौनी से भुज तक सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये नई सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। इससे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस सेवा को मथुरा स्टेशन तक विस्तारित करने की भी मंजूरी दे दी है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ मैं सरफिरोजी।
0: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्वाचन आयोग पर लगाए आरोपों को गलत बताया है। अमृतसर में श्री मेघवाल ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग सही काम नहीं कर रहा है तो केरलम में कांग्रेस चुनाव कैसे जीत गई। श्री मेघवाल नशा मुक्त पंजाब यात्रा में शामिल होने के लिए अमृतसर में हैं। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
2: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मई 2026 तक देश भर में गरीब परिवारों की महिलाओं को 10 करोड़ 50 लाख से अधिक निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 2021 में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा था,
4: हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो माँ को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में आग में तपते, ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है।
3: वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और महिलाओं को लकड़ी, उपले तथा अन्य प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भरता से मुक्त कराना है। आकाशवाणी से बात करते हुए उज्ज्वला योजना की ऐसी एक महिला लाभार्थी ने बताया,
5: मेरा नाम संगीता गुप्ता है, मैं नागपुर जिला की रहवासी हूँ। उज्ज्वला योजना का मुझे गैस सिकड़ी का लाभ मिला है जिससे मुझे अब खाना बनाने में समय की बचत होने लगी है। पहले मैं चूल्हे पे खाना बनाती थी जिससे पर्यावरण तथा मेरे आंखों को धुएं से तकलीफ होती थी। अब इस योजना के माध्यम से मुझे राहत मिली है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
3: योजना के तहत उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को पहला एलपीजी रिफिल और गैस चूल्हा निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया भी सरल रखी गई है। प्रवासी लाभार्थियों को राशन कार्ड या पते का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। वे परिवार और पते से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। उज्ज्वला उज्ज्वला योजना से घरेलू वायु प्रदूषण में कमी आई है और महिलाओं को ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करने में लगने वाले समय की भी बचत हुई है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा गांव सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जैसे पेड़ धैर्य से बढ़ते हैं वैसे ही जीवन भी समय के साथ खिलता है। प्रकृति को बचाइए क्योंकि यही जीवन को बचाने का सबसे सरल मार्ग है।
3: इस विचार के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बेंगलुरु से जगदम्बिका और हेम सावेनी जी का।
2: माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी, छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संत

0: ಸಂತೋಷಿ ಪಟೇಲ್, ದೀಪಾಂಶು ಪಟೇಲ್, ದಿವ್ಯಾ ಪಟೇಲ್, ದೀಪಾಂಜಲಿ ಪಟೇಲ್, ದೀಪಕ್ ಪಟೇಲ್ ಔರ್ ಟೇಕ್ಲಾಲ್ ಪಟೇಲ್ ಜಿ ಲಿಖತೆ ಹೇ.
1: ಅಜಿತ್ ಜಿ ಔರ್ ವಿಮಲೇಶ್ ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ.
0: ನಮಸ್ಕಾರ.
1: ಆಪನೆ ಆಗೇ ಲಿಖಾ ಹೈ ಹಮೇ ಉಮಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಛಾ ಲಗ್ತಾ ಹೈ, ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಪೂರಾ ಪರಿವಾರ ಮಿಲ್ಕರ್ ಇಸೆ ಏಕ್ ಸಾಥ್ ಸುನ್ತೇ ಹೈ.
0: ಜಿ
1: ಬಹುತ್ ಹಿ ರೋಚಕ ಔರ್ ಜ್ಞಾನವರ್ಧಕ ಜಾನಕಾರಿ ಆಪ್ ಹಮೇ ದೇತೇ ಹೈ. ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಧನ್ಯವಾದ್.
0: ಆಪ್ಕಾ ಭಿ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಸಂದೇಶ್ ಭೇಜನೇ ಕೆ ಲಿಯೇ. ಬಿಲಾಯಿಗಢ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ ಸೇ ರೋಶನ್ ಲಾಲ್ ದೇವಂಗನ್, ಕೌಶಲ್ಯಾ ದೇವಂಗನ್, ಹೇಮಲತಾ ದೇವಂಗನ್ ಔರ್ ಡಿಂಪಲ್ ದೇವಂಗನ್.
1: ಔರ್ ಬಡಾ ಬಮ್ ಚೌಕ್ ಖಂಡವಾ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಸೇ ಮಮತಾ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಔರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಜಿ.
0: ಖುರ್ಜಾ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಸೇ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಅರೋಡಾ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಅರೋಡಾ, ಚಂದನ್ ಅರೋಡಾ ಔರ್ ಅಂಕುಶ್ ಅರೋಡಾ.
1: ಔರ್ ಹಿಂಗೋಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇ ಶಾಹಜಿ ಬೋಡ್ಖೆ, ನಂದಾ ಬೋಡ್ಖೆ, ಹನುಮಾನ್ ಬೋಡ್ಖೆ ಔರ್ ಉತ್ತಮ್ ಜಾಮದಾಡೆ ಜಿ.
0: ಧನ್ಯವಾದ್ ಆಪ್ಕೆ ಸಂದೇಶೋ ಔರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾವೋ ಕೆ ಲಿಯೇ.
1: आइए आज एक बार फिर से जानते हैं एक और आविष्कार की रोचक कहानी.
0: जी श्रोता मित्रों, आपको कुछ हिंट्स देती हूँ. अंदाजा लगाना है आज हम किस आविष्कार की बात करने जा रहे हैं, तो हो जाइए तैयार.
1: जी, उसके बिना आधुनिक चिकित्सा की कल्पना ही नहीं की जा सकती. सोचिए सोचिए. चलिए एक आसपास का हिंट आपको दे देते हैं. वो प्रायः डॉक्टरों की गर्दन पर लटका रहता है.
0: वो है स्टेथोस्कोप. तो चलिए अब आगे चलते हैं.
1: क्या श्रोताओं, आपने कभी सोचा है कि इसका आविष्कार क्यों हुआ होगा? इसे पता लगाने के लिए हमें चलना होगा आज से लगभग 200 साल पीछे, सन 1816 के फ्रांस में.
0: जी
1: श्रोताओं, तब तक चिकित्सा विज्ञान में यह समझा जा चुका था कि मरीज की तबीयत, रक्तचाप या स्वास्थ्य की स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए नब्ज देखना या हृदय की धड़कन को सुनना जरूरी है.
0: श्रोताओं, उन दिनों डॉक्टर आमतौर पर हर मरीज के सीने पर कान लगाकर हृदय की धड़कन सुनते थे, जो व्यक्तिगत और सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से बहुत अटपटा था. फ्रांस के चिकित्सक थे रेने लेनेक. वे अक्सर सोचते थे, क्या हृदय की धड़कन सुनने का कोई और तरीका नहीं हो सकता?
1: श्रोताओ, वे अक्सर विचारों में डूबे रहकर इस समस्या का हल निकालना चाहते थे. एक दिन की बात है, उन्हें अपने बचपन के दिनों का एक खेल याद आ गया.
0: जी,
1: जब वे लकड़ी की कोई लंबी नली या ट्यूब लेकर उसके एक सिरे पर कुछ बोलते थे या हल्की खरोंच भी करते थे, तो दूसरे सिरे पर वो आवाज स्पष्ट सुनाई देती थी.
0: फिर क्या था, उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग किया. उन्होंने एक मोटे कागज की एक शीट को कसकर लपेटा और एक लंबी नली जैसी बना लिया. फिर उस नली का एक सिरा मरीज के सीने पर रखा और दूसरा सिरा अपने कान के पास.
1: और फिर ये हुआ कि वे उछल पड़े जब उन्हें रोगी के हृदय की धड़कन पहले से अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगी. डॉक्टर लेनेक ने इस उपकरण को नाम दिया स्टेथोस्कोप.
0: ये नाम ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपेन यानी देखना या निरीक्षण करना. बाद में लेनेक ने इसे और बेहतर बनाया. उन्होंने लकड़ी से बने नली नुमा उपकरण का इस्तेमाल किया.
1: बाद में इस पर बहुत बदलाव हुए. शुरुआती स्टेथोस्कोप आज के उपकरण से बिल्कुल अलग दिखता था. वो एक लकड़ी की कठोर नली जैसा था.
0: जी,
1: लेकिन इस छोटे से उपकरण ने चिकित्सा विज्ञान में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया.
0: अब परिस्थिति बदल गई. डॉक्टर केवल मरीज की नाड़ी या बाहरी लक्षणों पर निर्भर नहीं थे, वे शरीर के भीतर पैदा हो रही आवाजों को सुनकर बीमारी के संकेत खोज सकते थे.
1: तो श्रोता मित्रों, समय के साथ साथ स्टेथोस्कोप भी बदलता गया.
0: जी,
1: लकड़ी की एक नली से आगे बढ़कर इसमें दो कानों के लिए नलियां, लचीली ट्यूब और छाती पर रखने के लिए विशेष चेस्ट पीस विकसित हुए. यानी स्टेथोस्कोप ने डॉक्टरों को एक तरह से शरीर की आवाज की भाषा सिखा दी.
0: हृदय की धड़कन, फेफड़ों से आने वाली सांस की आवाज, कभी कभी असामान्य ध्वनियां, इन सबको सुनकर डॉक्टर बीमारी के बारे में महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त कर सकते हैं.
1: तो श्रोताओं, हमें विश्वास है कि अगली बार जब भी आप किसी डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप देखेंगे, तो सिर्फ एक चिकित्सा उपकरण के रूप में मत देखिएगा, लगभग 200 वर्ष पुरानी एक कहानी दिखाई देगी.
0: सच है मेरे श्रोता मित्रों, कभी कभी किसी समस्या का समाधान किसी महंगी मशीन या बड़ी बड़ी बातों और सिद्धांतों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की साधारण चीजों में छिपा होता है. बस जरूरत है अवलोकन और निरीक्षण, प्रश्न पूछने की आदत और प्रयोग करने का साहस.
1: आशा है श्रोताओं, आपको हमारी आज की ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी. लिखिएगा जरूर. और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से. हमारा प्रश्न है, स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए.
0: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं. इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए. और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो श्रोताओ, अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा सबसे पहला कार्यक्रम है पड़ोसी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि एक अच्छे पड़ोसी के क्या क्या गुण हो सकते हैं। संदेश दिया गया है कि हमें समाज में परस्पर सद्भाव और मेल प्रेम से रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद यथासंभव करनी चाहिए।

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल

कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया। हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी।

0: उन्होंने एक बिच्छू को पानी में बहते हुए देखा।
1: अरे अरे बिच्छू, अरे
0: उन्हें बिच्छू पर दया आ गई।
1: डूब जाएगा।
0: संत ने उसे हथेली पर लेकर पानी से बाहर निकालना चाहा। हथेली पर आते ही बिच्छू ने डंक मारा। संत का हाथ झन्ना गया। बिच्छू फिर पानी में गिर गया। उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकालने की बार बार कोशिश की।
1: अरे फिर चला गया।
0: बिच्छू हर बार डंक मारता और उनके हाथ से छूट जाता। संत लगातार कोशिश करते रहे। अंत में उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकाल ही लिया।

0: एक संत नदी में नहा रहे थे।
1: हर हर गंगे हर गंगे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हर हर गंगे हर गंगे हरि।

0: किनारे पर खड़ा एक लड़का ये सब देख रहा था। उसने संत से पूछा,
1: बाबा आपने बिच्छू को क्यों निकाला? ये तो आपको बार बार डंक मार रहा था। आपको कितनी तकलीफ हुई होगी।
2: बच्चे तुम ठीक कहते हो, तकलीफ तो मुझे अभी भी है, लेकिन मुझे खुशी भी है। मेरी थोड़ी सी तकलीफ से एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच गई। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना। बिच्छू ने तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, फिर मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता।

0: बालक सोचने लगा।
1: अरे बाबा ने एक छोटे से जीव के लिए कितनी तकलीफ उठाई,

बड़े लोगों का तो काम ही है भलाई करना। किसी ने कहा भी है, भला वही जो बुराई के बदले भी भलाई करे।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग की तकनीकी टीम के साथ मुझे यानी आपके मित्र अजीत
1: और विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: आईजी नगोया।
4: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ दोस्तों इस वक्त मौजूद है मोहम्मद शाहिद आजमी और हम लेकर आ गए हैं दोपहर 3:30 बजे के लाइव अपडेट्स ऑन द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। सबसे बड़ा अपसेट जो आज हम कह सकते हैं आज के दिन का है वो रहा फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन, जहां पर हमने देखा कि द वर्ल्ड नंबर फाइव पेयर ऑफ सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी हु आर द डिफेंडिंग गोल्ड मेडलिस्ट हैव क्रैश्ड आउट ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ द एशियन गेम्स 2026 बैडमिंटन मेंस। The Thai pair of Pakopo and Pirachai Sukpu won by a margin of 21-12, 19-21, 14-21. A very big upset for the Indian badminton contingent and for the badminton fans. After a dominant win in the first game, Satvik Sairaj and Chirag Shetty lost the second game after a and Sukpun. The Thai pair won by a close margin of 21-19 the second game. The match then got tied at 1-1, and in the final deciding game, the Thai pair were just too good for Satvik Sairaj and Chirag Shetty, and India went down 14-21 in the decider to let the Thai pair win over our Indian defending champions.
5: अच्छी खबर दे दूं साक्षी, यहाँ बैडमिंटन में भारत के मिश्रित युगल में ध्रुव और तनिषा की क्वार्टर फाइनल की जो जोड़ी थी क्वार्टर फाइनल पहुंच गई। जी हाँ, ध्रुव टोपी जोड़ी ने एशियन गेम्स के बैडमिंटन स्पेक्टिकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की वर्ल्ड नंबर 10 गो सून हुआट और लाई श्योन में 22-20, 24-22 से शिकस्त दे दी है। दोनों गेमों में मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। भारतीय जोड़ी ने दबाव के पलों में शानदार खेल दिखाते हुए जीत दर्ज की। क्वार्टर फाइनल में 27 सितंबर को ध्रुव और तनिषा का सामना विश्व नंबर 1 फेंग यांग झे और हुआंग डोंग पिंग की चीनी जोड़ी के खिलाफ होगा।
4: जी, और टेबल टेनिस की दुनिया से आपको बता दें कि एक और निराशाजनक खबर हम लेकर आपके लिए आ रहे हैं, जहां पर हमने देखा आज मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल्स हो रहे थे, अब वो फिलहाल समाप्त हो गए। इसमें भारत की तरफ से दिया चितले और मनु शाह वो रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड दे वर फाइटिंग अप अगेंस्ट द चाइनीज यिंगशा सुन एंड चू क्विन वैंग, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से ऑलमोस्ट इंडिया का जो सफर रहा है वो खत्म होते होते कगार से आते आते बच गया, क्योंकि पहले तीन सेट हम यहाँ पर कहेंगे जो पहले तीन गेम्स थे वो चाइना ने अपने नाम कर लिए हैं अभी तक 11-8, 11-5, 11-8। इसलिए ये सेमीफाइनल का मुकाबला दोस्तों अभी तो फिलहाल जारी है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि चाइना ने एक बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग शुरुआत भारतीय जोड़ी पर करी है पहले तीन गेम्स अपने नाम करके। शाहिद
5: जी, यहाँ पर बताऊंगा मैं आपको भारत की एक उम्मीद निरुपमा देवी 63 किलोग्राम के वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में 7वां स्थान हासिल कर पाई हैं। उम्मीदें थी कुछ बेहतर करेंगी, कुल 217 किलोग्राम उन्होंने वजन उठाया। निरुपमा ने इस मैच में 93 किलोग्राम वजन उठाया, हालांकि 95 किलोग्राम उठाना चाहती थी लेकिन वहां नाकाम रही। किलियन जर्क में 124 किलोग्राम का भार उठाया, 217 किलोग्राम था, जो मेडल टैली में यानी मेडल के स्थान पे आने के लिए, पोडियम पे आने के लिए काफी नहीं था।
4: जी, स्विमिंग की दुनिया से भी आपको बता दें कि यहाँ पर काइंड ऑफ मिक्स्ड न्यूज़ हम कह सकते हैं आई है, बिकॉज सजन प्रकाश प्रोग्रेस्ड आफ्टर फिनिशिंग 6th ओवरऑल इन द मेंस 200 मीटर बटरफ्लाई हीट्स विद द टाइम ऑफ 2 मिनट्स 0.94 सेकंड्स, लेकिन जब फाइनल्स में उन्होंने आज प्रवेश किया तो वेटरन स्विम

0: finished 7th in the men's 200 meter butterfly. He did not start in the 100 meters butterfly but came up with a valiant effort today. Wahi pe agar baat kare 21 saal ke Rishabh Das ki, to unhone apne niji score ko keh sakte hain, niji timing ko aur behtar kar liya pichli baar se. Because once the finals of the men's 200 meter backstroke event started, both the Indians, which is Rishabh Das and Utkarsh Patil, were in this final but neither finished amongst the top 3. The 21 year old Rishabh clocked 1 minute 58.7 seconds in the 200 meter backstroke finals to finish 6th, taking more than a second off his previous mark. Wahi par Utkarsh Patil was 7th, clocking a time of 2 minutes 00.94 seconds. So he was basically, Rishabh Das was overall able to better his timing from the last time.
1: एक टेबल टेनिस से भी खबर दे देते हैं. महिला युगल में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा. यशस्विनी घोरपड़े और दिया चिटले की जोड़ी राउंड ऑफ 16 में चीन की फैन शुहान और चेन ई के खिलाफ 0-3 से हार गई. चीनी जोड़ी ने मुकाबले में शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा था और तीनों गेम 11-7, 11-5, 11-8 से अपने नाम कर लिया. इस हार के साथ यशस्विनी और दिया की महिला युगल स्पर्धा में चुनौती समाप्त हो गई. वहीं एक और खबर दे देते हैं. हरमीत देसाई और सत्येन गणेशकरन की जापान के जो खिलाड़ी हैं सेरा मासुयामी और शुनके तोगामी के खिलाफ कड़ी चुनौती पेश की थी लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके. भारतीय जो जोड़ी थी उसे सीधे गेमों में 5-11, 9-11, 9-11 से शिकस्त का सामना करना पड़ा.
0: एंड अ वेरी क्विक अपडेट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बॉक्सिंग इन व्हिच इन द वुमेन्स 54 केजी राउंड वी फाउंड पैंग चोल मी डिफीटिंग प्रीति 5-0 इन द राउंड ऑफ 16. एन अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस कमिंग फ्रॉम द बॉक्सर. ऑफ कोर्स द पेरिस ब्रॉन्ज मेडलिस्ट प्रूव टू गुड फॉर द इंडियन प्रीति आउट देयर एंड शी लॉस्ट स्ट्रेट टू हर बाय गेटिंग डिफीटेड 5-0. सो निराशाजनक खबरें जरूर आती हुई यार दोस्तों इस अपडेट के अंदर, लेकिन उम्मीद है कि शाम को जब एथलेटिक के इवेंट्स आएंगे तो जिस प्रकार से आज एशियन गेम्स में दिन की शुरुआत हुई थी सिल्वर और गोल्ड मेडल के साथ, हम आज दिन की समाप्ति भी कुछ मेडल्स के साथ जो आज हमने कमाए हैं उसके साथ कर पाएंगे. फिलहाल के लिए शाहिद और मुझे साक्षी, हम दोनों को दीजिए इजाजत. हम जुड़ेंगे आपसे शाम के 4:30 बजे एक बार फिर से विद ऑल द लाइव अपडेट्स. फॉर नाउ थैंक यू एंड गुड बाय.
2: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया.

0: मोहम्मद शाहिद आजमी और हम लेकर आ गए हैं आज के शाम 4:30 बजे आपके लिए दी ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लेटेस्ट अपडेट और सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त की आपको हम दे सकते हैं वो एथलेटिक्स की दुनिया से, बिकॉज एथलेटिक्स के इवेंट्स शुरू हो गए हैं और उसके अंदर द बेस्ट न्यूज दैट हैज कम इन फॉर अस राइट नाउ इज दैट मनप्रीत कौर हैज गॉन ऑन टू विन ब्रॉन्ज इन एथलेटिक्स इन द शॉर्ट पुट इवेंट, इन द वुमेन्स शॉर्ट पुट इवेंट. जी हाँ, शी हैज वन ब्रॉन्ज फॉर इंडिया विद द बेस्ट थ्रो ऑफ 17.17. आपको बता दें कि मनप्रीत कौर का जो पहला अटेम्प्ट था वो 16.32 का था, सेकंड अटेम्प्ट 16.41, थर्ड अटेम्प्ट 16.80, चौथा अटेम्प्ट 17.17, पांचवा अटेम्प्ट 16.75 और छठा अटेम्प्ट था इनवैलिड. छठे अटेम्प्ट के बाद वो काफी निराश भी दिखी थी, बिकॉज उनको लगा था कि शायद वो अपना छठा अटेम्प्ट सबसे बेहतर कर पाएंगी, लेकिन क्योंकि वो इनवैलिड हो गया तो शी हैड टू सफाइस विद 17.17, व्हिच थेरबाय हैज गिवन इंडिया इट्स ब्रॉन्ज मेडल. एंड विद दिस द टोटल नंबर ऑफ मेडल टैली ऑल्सो ऑफ इंडिया हैज गॉन अप टू 21. चाइना ने लिया गोल्ड इसमें और सिल्वर दोनों ही. वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश खजूर जो है वो 100 मीटर्स के सेमीफाइनल से बाहर हो गए हैं. गुरिंदर वीर सेकंड्स का टाइमिंग क्लॉक किया और अनिमेश कुजूर ने 10.38 का टाइमिंग क्लॉक किया और इसके बाद क्योंकि वो अब सेमीफाइनल की रेस से ही बाहर हो चुके हैं, निराशाजनक खबर, भारत का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होने वाला है शायद 100 मीटर्स के आगे इस रेस के अंदर, अब फाइनल्स के अंदर.
1: जी बिल्कुल, अब बताना चाहूंगा बैडमिंटन की खबर है. हालांकि बैडमिंटन की अच्छी खबर है कि भारत के लिए, भारत के नजरिए से देखा जाए तो बेहद खास खबर है. एशियन गेम्स के बैडमिंटन के महिला युगल में भारत के लिए जो टिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राउंड ऑफ 16 में जगह पक्की कर ली है. राउंड ऑफ 32 में भारतीय जोड़ी का सामना हांगकांग के त्यांग ह्यू यान और लुई लोक लोक की जोड़ी से हुआ था. टीसा और गायत्री ने पहला गेम शानदार तरीके से 21-16 से अपने नाम किया. हालांकि दूसरे गेम में हांगकांग की जोड़ी ने जोरदार वापसी की और 21-16 से गेम जीतकर मुकाबला 1-1 की बराबरी पर ला दिया. इसके बाद निर्णायक तीसरे गेम में दोनों जोड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन टीसा और गायत्री ने दबाव के बीच धैर्य बनाए रखा और तीसरा गेम भी 21-16 से जीत लिया. इस तरह भारतीय जोड़ी ने मुकाबला 2-1 से अपने नाम करते हुए अगले दौर में जगह पक्की कर ली है. अब राउंड ऑफ 16 में टीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद के सामने जापान की विश्व नंबर 3 जोड़ी युकी फुकुशिमा और माइसु मासुमो की जोड़ी होगी. यानी अगले दौर में भारतीय जोड़ी के इस जोड़ियों में से शामिल एक मजबूत प्रतिद्वंदी मिलने वाली है.
0: होपफुली शायद उम्मीद करते हैं कि भारत का सफर यहाँ पे अच्छा बने. लेकिन वुमेन्स डबल्स के फर्स्ट राउंड मैच में सिमरन सिंघी और कवि प्रिया सेल्वम वर अप अगेंस्ट फेब्रियाना कुसुमा और मेलियासा पुष्पितसारी ऑफ इंडोनेशिया, वेयर द इंडियन डुओ लॉस्ट 9-21, 5-21 टू इंडोनेशिया इन स्ट्रेट गेम्स, थेरबाय लूजिंग द मैच 2-0 टू इंडोनेशिया. तो मेरे पास तो बैडमिंटन की दुनिया से आपको कुछ अच्छी खबरें देने के लिए नहीं थी जैसे शाहिद ने दी, लेकिन आई एम श्योर शाहिद हैज मोर अपडेट्स टू शेयर विद ऑल आवर लिसनर्स.
1: जी बिल्कुल, तैराकी की बात कर लेते हैं. ऋषभ दास ने एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया. हालांकि राष्ट्रीय रिकॉर्ड कोई बहुत बड़ा काम नहीं आया उनको इस इवेंट में, एशियन गेम्स में, एशियाई खेलों में भारतीय तैराक जो ऋषभ दास हैं उन्होंने पुरुषों की 200 मीटर बैक स्ट्रोक फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए, हालांकि शानदार प्रदर्शन जरूर रहा लेकिन पदक जीतने से चूक गए और छठे स्थान पर है, लेकिन उन्होंने 1:58.77 का समय निकालकर अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो उनका अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड था उसे तोड़ दिया. 19 वर्षीय ऋषभ ने अपने पुराने रिकॉर्ड में 1 सेकंड से ज्यादा का सुधार किया. वहीं भारत के उत्कर्ष पाटिल 2:00.94 के समय के साथ 7वें स्थान पर रहे.
0: जी, और टेबल टेनिस की दुनिया से आपको बता दें कि मिक्स डबल्स के अंदर आज भारत ने ब्रॉन्ज अपने नाम कर लिया. जी हां, मनुष शाह और दिया चितले लॉस्ट 8-11, 5-11, 8-11, 2-11 टू चाइनाज वांग चुक्विन एंड सुनजीत शाह इन द मिक्स डबल्स सेमीफाइनल्स. क्योंकि ये सेमीफाइनल का मुकाबला था, ये कह सकते हैं हां कि भारत ने ब्रॉन्ज अपने नाम कर लिया, लेकिन चाइना के दोनों ही अपोनेंट्स भारतीय

0: टेबल टेनिस प्लेयर्स के ऊपर बहुत बुरी तरह से आज हावी हो गए थे. कंप्लीट भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर प्रिटी मच गोइंग बाय द वे द चाइनीज फंक्शन एंड प्ले द गेम ऑफ टेबल टेनिस एंड एज अ रिजल्ट द इंडियन डुओ लॉस्ट द एंटायर गेम इन फोर एंटायर मैच इन फोर स्ट्रेट गेम्स मेकिंग द लीड टू बी 4-0 एंड देयर बाय सेटल्ड इन विद द ब्रॉन्ज मेडल. सो कांग्रेचुलेशंस टू द इंडियन मिक्स डबल्स टीम हु गॉट अस द ब्रॉन्ज टुडे इन इंडिया.
1: जी बिल्कुल, जिस तरह से आज सुबह लगातार मेडल मिल रहे थे, शाम ढलते ढलते उस मेडल में एक और मेडल जुड़ गया है. उम्मीद करेंगे अभी जो समय और बचा वहां भी कुछ अच्छी खबर आए. फिलहाल एशियन गेम्स की इस घंटे की अपडेट में फिलहाल इतना ही. अब आपसे मुलाकात होगी ठीक एक घंटे बाद. तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरी साथी साक्षी मांडवाल को इजाजत दीजिए. धन्यवाद.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.

0: एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम।

0: To all the listeners of Akashvani, मैं हूँ साक्षी मांडवाल। दोस्तों मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद आजमी। हम लेकर आ गए हैं शाम के 5:30 बजे ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लेटेस्ट अपडेट। सबसे पहले खुशखबरी आपको बता देते हैं एथलेटिक्स की दुनिया से, जहाँ वुमेन्स शॉटपुट में मनप्रीत कौर हैज बॉट द ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया। जी हाँ, विद द बेस्ट थ्रो ऑफ 17.17 meters मनप्रीत कौर ने भारत को एक और ब्रॉन्ज मेडल दिलवा दिया। इसके साथ ही भारत अब मेडल टेबल में कुल मिलाकर 21 मेडल्स कमा चुका है। चाइना ने दोनों ही गोल्ड दिए इन द वुमेन्स शॉट पुट। आगे बढ़ेंगे मेंस 100 मीटर सेमीफाइनल पे। गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर दोनों ही 100 मीटर सेमीफाइनल से बाहर हो चुके हैं। जी हाँ, दे विल नो मोर बी टेकिंग पार्ट इन द फाइनल्स टुडे बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे कुडंट इवन क्वालिफाई और फिनिश ऑफ इन अ नाइस मैनर फ्रॉम द सेमीफाइनल। आपको एक और मेडल अलर्ट यहाँ पर दे देते हैं। गुलवीर सिंह ने सिल्वर बैक कर लिया एथलेटिक्स के मेन 10,000 meters के अंदर। अनदर medal coming for India and this time it is the silver medal that Gulveer Singh has bought for the Indians. And 800 meter finals in heptathlon in the event in women's heptathlon with a timing of 2 minutes 16.43 seconds while compatriot Anamika clocked in 2 minutes 18.06 seconds to finish third in the events. Lekin इसी वजह से 6 spot पर फिनिश किया उन्होंने हेप्टाथलॉन के अंदर। वहीं अनामिका ने 8वें स्थान पर खत्म किया। और लास्ट में चलते चलते एथलेटिक्स के अंदर आपको बता देते हैं कि भारत की सिंधु श्री गणेशा इज आउट ऑफ द वुमेन्स पोल वर्ल्ड फाइनल विदाउट अ वैलिड मार्क। शी फेल्ड टू क्लियर 3.85 मीटर्स इन 2 attempts बिफोर ऑल्सो मिसिंग आउट एट 4 meters। शाहिद
1: जी बिल्कुल, अभी आपने गुरवीर सिंह का जिस तरह जिक्र किया, उम्मीद थी कि वो पोडियम फिनिश करेंगे और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और 10,000 meters उन्होंने एक रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीत लिया है। मेडल की बात चल रही तो आज जो जिस तरह से दिन की शुरुआत हुई थी, भारत ने गोल्ड जीता था, उसके बारे में अपने श्रोताओं को बता दूं जो बाद में हमारे साथ जुड़े हैं। एशियन गेम्स में भारत के लिए कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता था। जी हाँ, एशियन गेम 2026 में भारत का ये दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले क्रिकेट में महिलाओं ने स्वर्ण पदक भारत को दिलाया था। अगर आज के शूटिंग के मुकाबले की बात करें तो अंतिम स्कोर जो रहा था 484.6 रहा था, जो दूसरे स्थान पर है दक्षिण कोरिया से 6.6 अंक अधिक था। इससे अंदाजा लग सकता कितना बेहतरीन भारत ने प्रदर्शन किया था। वहीं एक और खबर दे दे बॉक्सिंग के रिंग से, जहां सचिन ने शानदार प्रदर्शन टिकट हासिल किया है। पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में सचिन ने जॉर्डन के पूर्व एशियाई चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद अबू जाजे को कड़े मुकाबले में 4 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही सचिन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब उनके सामने जापान के शुनसुके कितामोतो की चुनौती होगी, जो विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता रह चुके हैं। लेकिन प्रीति पवार से उम्मीद थी वो भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन 54 किलोग्राम भार वर्ग में वो राउंड ऑफ 16 में ही उनका सफर खत्म हो गया। 0-5 से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा।
0: जी और हॉकी की अगर बात करें तो खुशखबरी है, क्योंकि भारतीय महिला हॉकी टीम ने आज जापान को 3-1 से हरा दिया। लाल रेम सियामी ओपन द स्कोरिंग बिफोर इशिका डबल्ड इंडिया लीड विद नवनीत कौर एडिंग टू द 3rd goal। और इसके साथ ही अब आपको ये बता दें कि भारत सेमीफाइनल्स में तो प्रवेश कर चुका है, लेकिन अभी उनका आखिरी मैच पूल मैच बचा हुआ है सिंगापुर के साथ, एंड उसके बाद भारत का सामना या भारत भारतीय महिलाओं को दोस्तों हम देख सकेंगे सेमीफाइनल हॉकी मैच के अंदर।
1: जी बिल्कुल देख सकेंगे। और जिस तरह से आज का दिन रहा, कई भारत के मेडल्स आए हैं, लेकिन खास तौर से अगर देखा जाए तो अभी भी जो मेडल आया है गुलवीर सिंह का, उसने शाम को सुहानी बना दिया है।
0: ऑफ कोर्स शाम को तो सुहानी बना ही दिया है, क्योंकि हम मेडल्स की आज बात ही कर रहे थे। तो आपको ये भी बता दें कि स्क्वॉश की दुनिया से भी आज हमें काफी सारी खुशखबरी मिली थी, बिकॉज जोशना चिनप्पा ने तो हमें एक मेडल का एक तरीके से कहते हैं ना भारत को आश्वासन या रिश्योरेंस दे दिया है, क्योंकि अब जोशना चिनप्पा और उनके साथ साथ जो उनके पार्टनर वहां पर होंगे इस गेम में विच इज वी सेंथिल कुमार, वो आज हमने देखा कि कैसे मिक्स डबल स्क्वॉश सेमीफाइनल्स में स्ट्रेट गेम विन करके 11-3, 11-5 से अपने फिलिपिनो ओपोनेंट्स की और अब यहाँ से भारत को कम से कम एक ब्रॉन्ज तो मिलेगा। लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर हम अगर आपको बताएं शाहिद, एक बहुत जरूरी चीज जो थी वो यही थी कि हम देखने वाले हैं यहाँ पर वीर चौटरानी, जो कि हार गए थे आज मोहम्मद इरफान से पाकिस्तान के इन द मेन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स 1-3। अब मोहम्मद इरफान का सामना होगा अभय सिंह से इन द सेमीफाइनल ऑफ मेन्स सिंगल्स। यस, क्योंकि अभय सिंह ने आज जापान के सुकुई को 3-0 से हरा कर सेमीफाइनल में मेन्स सिंगल्स के प्रवेश किया और उनका सामना अब होगा मोहम्मद इरफान से।
1: जी बिल्कुल, और क्या घटित होता अगले एक घंटे में हम इसकी जानकारी ठीक 6:30 पर देंगे। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथी साक्षी मांडवाल को इस घंटे के अपडेट के साथ इजाजत दीजिए। धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: निरपेक्ष असहनशीलताम् इति स्वकीयं दृढं संकल्पं च पुनः एते उपस्थापयन् त्रिभिः अपि मन्त्रिभिः संयुक्तराष्ट्रस्य नियमपत्रस्य अन्ताराष्ट्रियविधिसंहितायाः सुदृढबहुपक्षीयव्यवस्थायाः च प्रति स्वकीया प्रतिबद्धता प्रदर्शिता एकस्मिन् संयुक्तविज्ञापने आईबीएसए नेतारः संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदः व्यापकपरिष्कारस्य आह्वानम् अकुर्वन् येन एषा संस्था समकालीन यथार्थतायाः प्रतिनिधित्वं कुर्वाणा अधिकं लोकतान्त्रिकप्रभाविणी च भवेत् अत्रावधेयं यत् तैः जलवायुपरिवर्तनस्य समाह्वानानां त्वरितसमाधानाय नवीकरणीय ऊर्जायाः प्रसाराय सांगणकीय संपर्क संवर्धनाय अथ आर्थिक समृद्ध्यै कृत्रिम प्रज्ञायाः समुचित उपयोगाय विशेषं बलं प्रदत्तम् वैश्विक अनिश्चिततासु सत्यपि भारतेन 17.8% विकासं सम्प्राप्य तीव्रतम वर्धमान अर्थव्यवस्थायाः स्थानं सुरक्षितम् इति ग्रेटर नोएडा नगरे उत्तर प्रदेश अन्ताराष्ट्रिय व्यापार मेलायाः उद्घाटनावधौ गृहमन्त्री अमित शाहः उदघोषयत् सः अवदत् यत् मूडीज इति संस्थया भारतस्य विकास पूर्वानुमानं प्रवर्धितम् जेसीआर संस्थया च देशस्य सार्वभौम मानांकनं समुन्नतम्
1: उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश लक्ष्य तय कर सकता है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे इस प्रदर्शनी में कई व्यापारिक समझौते भी होने वाले हैं दुनिया भर से आए हुए खरीदार यहाँ मौजूद है और इससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट उत्पादन और बिक्री तीनों क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली
0: केन्द्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मन्त्रिणा भूपेन्द्र यादवेन अद्य नवदिल्ल्यां प्रभावी वन प्रबन्धनार्थं क्षमता संवर्धन परियोजना इत्याख्यायाः कार्यशालायाः विधिवत् शुभारम्भो विहितः अत्रावसरे मन्त्री न्यरूपयत् यत् इयं परियोजना वनाग्नि प्रबन्धने जैव विविधता संरक्षणे अथ जलवायु कार्यान्वयने प्राविधिक क्षेत्रीय दक्षतानां संवर्धनाय महतीं संभावनां धारयति दक्षिण छत्तीसगढ़ प्रान्ते तटसन्निकटे दक्षिण ओडिशा प्रान्ते च संजातस्य न्यून वायुपीडमण्डलस्य प्रभावतः अद्य भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन तयोः राज्ययोः कतिपयेषु भागेषु अतिवृष्टेः अत्यन्त भीषण वृष्टेः च संभावनां प्रकटय्य रक्तवर्णीया संचेतना प्रकटिता अपरञ्च एतद् वायुपीडमण्डलम् आगामिषु द्वादशहोरासु शिथिलं भूत्वा सामान्यानां न्यूनवायुपीडसीमायां परिणश्यति इति विभागाधिकारिभिः निगदितम् अद्य जापानदेशस्य एचिनागोयानगरे एशिया प्रतिस्पर्धायां महिलानां शॉट्पुट स्पर्धायां भारतीयक्रीडिका मनप्रीत कौर कांस्यपदकम् अवाप्तवती इति वार्ताः

0: पार की। कजाकिस्तान की पोलिना इवानोवा ने भी 4.15 मीटर की ऊंचाई पार की। दोनों खिलाड़ी 4.25 मीटर की ऊंचाई पर सफल नहीं हो पाई, जिसके बाद कांस्य पदक साझा किया गया। इस उपलब्धि के साथ वरानिका एलंगोवन एशियन गेम्स में पोल वॉल्ट में पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। भारत के लिए यह एथलेटिक्स में एक ऐसी उपलब्धि है जो लंबे समय तक याद रखी जाएगी।
1: जी शायद, थैंक यू सो मच। और इसी अपडेट को थोड़ा आगे लेके चलेंगे एथलेटिक्स में, क्योंकि आज मल्टीपल इवेंट्स हो रहे हैं दोस्तों। तो आपको बता दें कि वुमेन्स 400 मीटर फाइनल में भारत की प्राची भी क्वालिफाई कर चुकी है। वुमेन्स 400 मीटर

0: finals के लिए after finishing third in a heat in 53.46 seconds. She advances as one of the next two fastest runners outside the top two finishers in the three heats. Iran's Zehra wins the third heat in 52 seconds. Earlier, India's Kiran had finished second in a heat in 53.44 seconds to qualify directly. ये भी आपको बता दें कि the top two finishers from each of the three heats qualifies directly for the final with the next two fastest athletes across all three heats also advancing. वही मेंस 400 मीटर फाइनल में विशाल टीके का एक बहुत स्टुपेंडस रन रहा उनके हीट में टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल बिकॉज ही फिनिश्ड इन द फर्स्ट स्पॉट इन द हीट टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल. वेल द इंडियन वन हिज मेंस 400 मीटर हीट इन 45.27 सेकंड्स टू स्टॉर्म इनटू द फाइनल. विशाल पिप्स कतार्स अमर इब्राहिम बट जस्ट 0.04 सेकंड्स. इंडिया विल नाउ हैव रिप्रेजेंटेशन इन बोथ द मेन एंड वुमेन्स 400 मीटर फाइनल्स. शाहिद
1: जी, ट्रैक एंड फील्ड पर भारतीय खिलाड़ी आज शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. ट्रैक पे चलते हैं, एथलेटिक्स की बात करते हैं. गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर में जो शानदार प्रदर्शन किया है, रजत पदक जीता, उसकी बात कर लेते हैं. एशियन गेम 2026 में भारत के गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीत लिया है. गुलवीर ने 28:29.38 सेकंड का समय निकाला. वहीं बहरीन के बिरहानू बालवेव ने 28:27.51 का समय निकाला और स्वर्ण पदक अपने खाते में जोड़ा. जबकि अल्बर्ट किप्टू ने 28:34.38 के समय के साथ कांस्य पदक हासिल किया. यह एशियन गेम्स में गुलवीर सिंह का दूसरा पदक है. इससे पहले उन्होंने हांगझाऊ 2023 में 10,000 मीटर में कांस्य पदक जीता था और इस बार उन्होंने अपने पदक का रंग बदला है. गुलवीर सिंह भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं. उन्होंने पिछले साल एशियाई चैंपियनशिप का खिताब भी जीता था. इस साल ग्लासगो में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक हासिल किया था. खास बात यह कि आइची नागोया एशियन गेम्स में पुरुषों और महिलाओं दोनों में 10,000 मीटर की स्पर्धाओं में भारत ने पदक जीता. महिलाओं के 10,000 मीटर में जैसा हमने पहले बताया था, सीमा कुमारी ने कांस्य पदक जीता है. यानी महिलाओं में कांस्य पदक मिला, पुरुषों में हमें 10,000 मीटर में रजत पदक हासिल हुआ है.
0: हां जी, एंड टू ब्रिंग द बिग न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एथलेटिक्स एंड वुमेन्स शॉट पुट वंस अगेन फॉर ऑल आवर लवली लिसनर्स, मनप्रीत कौर ने भारत को आज ब्रॉन्ज मेडल दिलवा दिया विद द बेस्ट थ्रो ऑफ 17.17 मीटर्स. यस, इट वाज अ मोमेंट फॉर एवरी इंडियन टू फील प्राउड बिकॉज दैट वुड डेफिनेटली मेक अस ऑल फील वेरी हैप्पी. चाइना को गोल्ड और सिल्वर दोनों ही वुमेन्स शॉट पुट पे प्राप्त हुआ. मनप्रीत कौर के नाम रहा आज का ब्रॉन्ज मेडल. एंड आपको ये भी बता दे कि दिस डेफिनेटली ये इस जीत के साथ उस समय भारत के हो गए थे 21 मेडल, लेकिन क्योंकि उसके बाद भारत का और मेडल भी आ गया एथलेटिक्स में, टैली राइज होकर बढ़ गई टू 22 मेडल्स. बट एक और चीज, मेंस 100 मीटर सेमीफाइनल के अंदर गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर दोनों ही 100 मीटर सेमीफाइनल से बाहर हो गए. 10.32 सेकंड्स की टाइमिंग रही गुरिंदर वीर सिंह की और अनिमेश कुजूर की टाइमिंग रही 10.38 सेकंड्स की. सो दैट वॉज एन अपसेटिंग डिफीट और शुड बी से एन अपसेटिंग न्यूज बिकॉज इंडिया वुड नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेशन इन द फाइनल्स ऑफ द मेंस 100 मीटर्स टुडे. शाहिद
1: जी, आपने मेडल टेबल की बात की, भारत की बताया, जहां पर भारत ने 2 गोल्ड 9 सिल्वर 11 ब्रॉन्ज समेत 22 पदक जीते हैं. वहीं अगर मेडल टेबल पे देखें तो सबसे ऊपर अभी भी चीन बना हुआ, 97 गोल्ड 36 रजत पदक है. इसके अलावा 24 कांस्य पदक सहित 157 पदक जीतकर सबसे ऊपर पहले पायदान पर बना. जबकि जापान की बात करें, 27 स्वर्ण 42 रजत 44 कांस्य सहित 113 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर. जबकि कोरिया की बात करें तो 13 स्वर्ण पदक 17 रजत पदक 34 कांस्य समेत 64 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर है.
0: जी, थोड़ा सा खुशी भी होती है और हैरानगी भी होती है कि अगर हम देखें पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हैज गॉट 97 गोल्स. वी विल टॉक अबाउट दैट शायद इन द नेक्स्ट अपडेट बिकॉज अभी वक्त हो गया है अपने सारे दोस्तों से विदा लेने का. मैं साक्षी मांडवाल और शाहिद आजमी फिलहाल के लिए आपसे विदा लेते हैं. आपके साथ एक बार फिर से शाम को 7:30 बजे आज के दिन की आखिरी अपडेट के साथ जुड़ेंगे लाइव फ्रॉम आकाशवाणी ब्रिंगिंग टू यू द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026. थैंक यू सो मच.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं साक्षी मांडवार। तो चलिए आज की अंतिम अपडेट की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले एथलेटिक्स की, जहां 400 मीटर दौड़ में भारतीय एथलीट विशाल टीके ने 45.27 सेकंड के समय के साथ अपनी हीट जीती और फाइनल में जगह बनाई। खास बात यह रही कि तीनों हीट में उनका सबसे तेज, यानी सबसे तेज जो उनकी दौड़ थी वो तीनों हीट में सबसे तेज रहे। महिलाओं की 400 मीटर में किरण पहल और प्राची ने भी फाइनल का टिकट कटाया। किरण ने 53.44 सेकंड और प्राची ने 53.646 सेकंड का समय लिया। दोनों अब कल फाइनल में उतरेंगी। पुरुषों के हैमर थ्रो स्पर्धा में भारत को निराशा हाथ लगी। दमनीत सिंह का सर्वश्रेष्ठ थ्रो 67.56 मीटर रहा, जो उन्होंने शीर्ष 8 में जगह दिलाने के लिए पर्याप्त उनके लिए नहीं रहा है। प्रवीण कुमार ने 65.24 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया, लेकिन वो 11वें स्थान पर है। शीर्ष 8 में जगह बनाने के लिए 68.10 मीटर का थ्रो चाहिए था। खास बात यह है कि दोनों भारतीय खिलाड़ी इससे पहले इस दूरी को पार कर चुके हैं। इस तरह हैमर थ्रो के फाइनल में भारत का अभियान निराशाजनक देखने को मिला, जिस तरह से शुरू हुआ है।
2: जी, एंड नाउ गिविंग यू सम मोर अपडेट्स फ्रॉम हाउ द डे स्टार्टेड ऑफ टुडे, सिंस वी आर रैपिंग अप द डे टुडे। शूटिंग में लेट्स नॉट फॉरगेट दैट कमलजीत एंड सुरुचि इंदर सिंह वन एज द गोल्ड इन 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम फाइनल इवेंट, मेकिंग द गोल्ड टैली फॉर इंडिया टू 2 मेडल्स। एंड अगेन इन शूटिंग वी हैड एपीएस तोमर, रुद्राक्ष पाटिल एंड नीरज कुमार इन मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस, विनिंग द सिल्वर फॉर इंडिया। और एथलेटिक्स में जैसे हम अभी बता ही रहे थे आपको कि गुलवीर सिंह हैज वन एज द सिल्वर इन द मेंस 10,000 मीटर। टेबल टेनिस की दुनिया में दोस्तों आपको बता दिया, दिया चिटले एंड मनुषा लॉस्ट तुनजिंगशा एंड वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द मिक्स डबल सेमीफाइनल्स फॉर इंडिया। वहीं मनप्रीत कौर ने भी भारत को आज ब्रॉन्ज दिलवाया है और कृष्णा जयशंकर मेनन ने फिनिश किया 5वें स्थान पर विमेन के शॉर्ट पुट अरीना के अंदर। शाहिद
1: जी, दो भारत के खिलाड़ी हैं जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, उनके बारे में बताना चाहूंगा। भारत के गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर सेमीफाइनल में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। गुरविंदर 11वें और अनिमेश कुजूर 18वें स्थान पर रहे। हालांकि दोनों भारत में जिस तरह से प्रैक्टिस करके जिस तरह गए थे, उम्मीदें थी कि काफी बेहतर करेंगे, लेकिन पुरुषों की 100 मीटर दौड़ के फाइनल में जगह बनाने से वो चूक गए। आपको बता दें गुरविंदर ने 10.32 का समय लिया, जबकि अनिमेश कुजूर ने 10.38 का समय लेकर 100 मीटर की दौड़ पूरी की और इनके इसके साथ ही उनकी जो चुनौती थी 100 मीटर में वो समाप्त हो गई है।
2: जी, एंड मूविंग ऑन टू एथलेटिक्स आल्सो, वी हैड बरानिका एलाइन गोवन विनिंग अस द ब्रॉन्ज वुमेन्स पोल वॉल्ट फाइनल में, अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया टू हैव वन फर्स्ट टाइम। स्क्वाश की बात करें तो जोशना चिनप्पा और वी सेंथिल कुमार बी डेविड पलिनो जेम के अरेबिदो ऑफ फिलीपींस इन मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल, यहां पर भी भारत के लिए एक मेडल कंफर्म हो गया। आज का दिन स्क्वाश के नजरिए से तो भारत के लिए बहुत अच्छा रहा। कबड्डी में दोनों ही महिला और जो मेंस हॉकी की टीमें हैं भारत की, उन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव ओपोनेंट्स को, यानी भारतीय महिलाओं ने नेपाल को आज हराया कबड्डी के सेमीफाइनल में और फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं कबड्डी की तरफ मेन में भारत ने थाईलैंड को हराया और उसके फाइनल में प्रवेश कर लिया। तो ओवरऑल इफ यू वांट टू सम अप इंडियाज डे टुडे इन टर्म्स ऑफ द मेडल काउंट, इट स्टार्टेड ऑफ ऑन अ वेरी गुड नोट एंड थैंकफुली इट्स आल्सो एंडिंग ऑन अ डिसेंट एंड अ गुड नोट। शाहिद टुडे
1: जी, बिल्कुल, मैं एथलेटिक्स की बात कर रहा हूं। एथलेटिक्स में भारत के लिए एक बड़ी खबर यह भी रही, बरानिका एंगलगोवन ने एशियन गेम 2026 की महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में जो कांस्य पदक जीता है, जो इतिहास रचा है, वो एक संदेश देता है कि जो भारत के एथलेटिक्स के खासकर अगर हम बात करें ट्रैक और फील्ड की, दोनों में बेहतरीन देखने को मिल रहा है।
2: जी, और थोड़ी सी अपसेटिंग न्यूज़ बता दें कि आज के दिन का सबसे बड़ा अपसेट बैडमिंटन की दुनिया से आता है, जहां पर सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी लॉस्ट टू पकापोन एंड पीरता चाई सुखपोन 1-2 ऑफ थाईलैंड इन द मेंस डबल्स फर्स्ट राउंड। ये किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। दे वर दी मेडल कंटेंडर्स एंड वी वर कीपिंग आवर होप्स अलाइव फ्रॉम दिस डू ऑफ इंडिया, बट थिंग्स डिड नॉट गो अवे। वेट लिफ्टिंग के अंदर भी निरुपमा देवी फिनिश्ड 8th इन द वुमेन 61 किलोग्राम कैटेगरी, अनदर हार्ट ब्रेक ओवर देयर। उसके साथ साथ हम बताते हैं इक्वेस्ट्रियन में, जहां पिछली बार भारत को गोल्ड मिला था, आज उसमें गौरव पंडीर, हृदय विपुल चड्ढा, श्रुति बोरा एंड जयसुद रन आउट ऑफ मेडल प्लेसेस इन द टीम फाइनल। टेबल टेनिस में मानुष शाह बीट फराजी बेंजामिन मिंक सिंगल्स राउंड 2 मैच। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि इट वाज अ मिक्स डे ऑफ मेडल्स दैट वर पोरिंग इन, बट ऑन अ लाइटर एंड अ बेटर नोट वी कैन ऑल्सो एंड द डे विद द
3: ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳು, ಓದುತ್ತಿರುವವರು ವಿದ್ಯಾಭಟ್. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಯುವಜನರ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಭಾರತದ ಸಮಗ್ರ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ರಕ್ಷಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್. ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೌಶಲ್ಯ ಯೋಜನೆ 2.0 ಅಡಿ 70,000 ಯುವಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ. ಹಾಗೂ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2026 ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಭಾರತ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜನಸೇವೆಯೇ ದೇಶಸೇವೆ ಎಂಬ ಮಂತ್ರದಡಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸುಶಾಸನದ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ 2047 ವೇಳೆಗೆ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಲವು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಮಹತ್ವದ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕುರಿತ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಗತಿಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತ ಒಂದು ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಪಿಎಂ ಗತಿಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯು 2021 ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅದರ ಜಿಐಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ರಾಷ್ಟೀಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್, 16 ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ರೈಲ್ವೆ, ಬಂದರು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಜಾಲದೊಂದಿಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೆಚ್ಚ ಜಿಡಿಪಿಯ ಸುಮಾರು 13%-14%. ಅಧಿಕೃತ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಇದು 8%. ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

0: ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಫ್ ಎಂ ರೇನ್ಬೋ ಕನ್ನಡ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ 101.3 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯ 8:44 ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 8:45 ಸರಿಯಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಮಾಚಾರ ಸಂಧ್ಯಾ, 9:00 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆಗಳು, ಅದಾದ ನಂತರ 9:15 ಮಧುರವಾದ ಹಿಂದಿ ಗೀತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸುಕೋನ್ ಕಿ ಪಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೇಟಿ.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं. श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया. केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफ्सपा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की. जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते. निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता. गुरवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं. उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया. प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया. श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है.
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है. चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं. इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है. इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी.
1: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया.
2: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है. ये 7 सूत्र हैं, सेवा भाव,

0: संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद, आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही सात सूत्रों को आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री इस समय नई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आयोजित भजन क्लबिंग कार्यक्रम में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं और उनकी ये यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र से प्रेरित है और इस संकल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जारी है। सेवा और सुशासन की दृष्टि से संचालित सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार का ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि किस प्रकार इस संकल्प को आगे रखते हुए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का पद सृजित किया गया है।
2: पहले भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, अलग अलग योजनाएं तैयार करती थी, प्रशिक्षण देती थी और सरकार को अपनी अपनी सलाह देती थी। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए कई बार सुझाव दिए गए थे। 1999 की करगिल समीक्षा समिति और उसके बाद बने मंत्रियों के समूह ने भी इस दिशा में बदलाव की सिफारिश की थी। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का पद बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इससे तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय होगा।
0: आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है।
2: दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने CDS का पद बनाने को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया गया जिसका प्रमुख CDS को बनाया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा कि CDS की नियुक्ति से सरकार को सैन्य मामलों पर सलाह लेने के लिए एक ही प्रमुख अधिकारी से संपर्क करने की सुविधा मिली।
3: ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वन पॉइंट कॉन्टैक्ट होने के कारण सरकार को जो भी एडवाइस देना है, सरकार को किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए, खबर चाहिए, एडवाइस चाहिए, एक आदमी जो पूरा सब कुछ संभाल सकता है, तो इसीलिए CDS का होना निहायत जरूरी था।
2: CDS के पद के सृजन होने के बाद तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और समन्वय और बेहतर हो गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफ्सपा को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। नागालैंड के 9 जिलों में भी इसे बढ़ाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा असम की सीमा से लगे नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी अफ्सपा को बढ़ाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
5: हमारा रक्षा उत्पादन 1,78,000 करोड़ को पार कर गया है और इसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। आज यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं। अमेठी में बनी AK-203 असोल्ट राइफल आज नक्सलवादी और टेररिस्टों की नींद उड़ा चुकी है।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह में उन्होंने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है।
6: आज जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा।
1: ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने कहा है कि राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला महिला स्व सहायता समूहों, ग्रामीण कारीगरों और महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का बिक्री का मंच प्रदान करेगा। विजयवाड़ा में उन्होंने कहा कि ये मेला 8 से 22 अक्टूबर तक लगभग 600 स्टॉलों के साथ आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 4030 अम्बेडकर प्रतिमा स्थलों के विकास के लिए 403 करोड़ रुपए जारी किए हैं। योजना के पहले चरण में 403 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में इस प्रतिमा स्थलों कुल मिलाकर 4030 स्थलों का विकास किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। विदेश मंत्री ने एक अन्य बैठक में खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉ. जयशंकर कल महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर आयोजित उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री जॉर्ज ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर संयुक्त राष्ट्र घोषण को अपनाए जाने का स्वागत किया। भारत ने क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन के प्रारंभ का स्वागत किया है। इसकी घोषणा इस वर्ष 26 मई को नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में की गई थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल का जहाज शौनक चारों क्वाड देशों के समुद्री पर्यवेक्षकों के साथ चेन्नई से रवाना हो गया है। शंघाई में वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। टीम इंडिया के प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 5वें हिस्से से भी अधिक है। मौसम विभाग ने कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और बहराइच जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज बारिश का अनुमान है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
8: जापान एशियाई खेलों के आज सातवें दिन भारत ने एक स्वर्ण, दो रजत और तीन कांस्य पदक जीते हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सुरुचि ने कहा कि इस जीत से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।
9: टीम वर्क बहुत ही अच्छा है, मुझे मेरे टीम पार्टनर पर पूरा भरोसा था कि वो अच्छा ही करेगा और हम अपना 100% देंगे तो हमारी बहुत ही अच्छी

0: और ये मेडल जीतने के लिए कॉन्फिडेंस मुझे वर्ल्ड कप से मिला है और अभी एशियन गेम्स में जीता है तो शायद ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे कॉन्फिडेंस देगा।
1: 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट में बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। टेबल टेनिस में मानुष शाह और दिया चिताले ने मिक्स डबल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य समेत 23 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है।
2: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित इस योजना में गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफ्सपा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम स्पर्धा 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: Far away in the land of the rising sun, the Indian contingent is striving hard to make a billion Indians proud of their outstanding performances. Hello and welcome to the daily Asian Games Aichi Nagoya recap only on Akashwani. My name is Abhinav Punshi. Here are the main headlines of the day. Day 7 of the Asian Games began on a bright note for the Indian contingent in Aichi Nagoya after Suruchi Singh and Kamaljeet claimed India's second gold medal, this one coming in the 10-meter air pistol mixed team event. Just minutes before this, the Indian trio of Neeraj Kumar, APS Tomar and Rudraksh Patil claimed a silver in the 50-meter 3P men's team event. Meanwhile, Manoj Shah and Diya Chitale lost the mixed doubles semi-finals, thus winning India its first mixed doubles medal in table tennis at the Asian Games after 8 years. Shortly afterwards, Josh Achitnampa and V. Senthil Kumar assured themselves of a medal in the mixed double squash. The India men's kabaddi team thumped Thailand, while the women's side defeated Nepal to enter the finals, thus assuring India at least two more silver medals. Manpreet Kaur added to India's medal tally next, winning the bronze medal in women's shot put. Gulveer Singh also won a silver medal in the men's 10,000 meter event. Let's now hear some more detailed reports. First up from the shooting range, where India struck gold, here's Sakshi Manwal with all the details.
2: The best news at the start of the day today came from 10-meter air pistol mixed team event, where Indian shooters Kamaljeet and Suruchi Singh put up a brilliant show. In the final of the 10-meter air pistol mixed teams event, they finished with the gold medal, thus clinching India's second gold of the Asian Games 2026. Another good news in the world of shooting was from the men's 50-meter rifle three positions. Indian shooters delivered a strong performance in the men's 50-meter rifle three positions, securing the team's silver. Aishwarya Pratap Singh Tomar finished third with 589, while Neeraj Kumar stood fourth with 588. Rudraksh Balasaheb Patil finished ninth with 585. India's combined score of 1,762 earned them the silver medal. China took gold with 1,766. In the 50-meter rifle three positions individual event, Aishwarya Pratap Singh Tomar had men's 50-meter rifle three positions individual final, finishing fifth. Neeraj Kumar had earlier been eliminated in the eighth place, bringing India's campaign in the event to a sad end. With this, shooting remains the highest contributor in the total number of medals contributed by a specific Asian Games 2026 so far, with a total of 10 medals coming from the world of shooting. This includes 1 gold, 5 silvers and 5 bronze.
1: It was another great day for India in athletics. Shabab Anwar has more.
3: एथलेटिक्स में भारत का प्रदर्शन आज संतोषजनक ही रहा और सबसे खास बात ये रही कि भारत ने एशियन गेम्स में पहली बार पोल वॉल्ट का मेडल जीता है। ब्रानिका एलांगोवन ने महिलाओं की पोल वॉल्ट में 4.15 मीटर की ऊंचाई पार कर कांस्य पदक जीता। उधर एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में रजत पदक जीता। 2023 में इसी स्पर्धा में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। महिलाओं के शॉटपुट में मनप्रीत कौर ने 17.7 मीटर का थ्रो फेंक कर कांस्य पदक जीता। कृष्ण जयशंकर मेनन 16.7 मीटर के प्रदर्शन के साथ पांचवें स्थान पर रहीं। महिलाओं के 400 मीटर और प्राची चौधरी ने फाइनल में जगह बनाई। पुरुषों की 400 मीटर में विशाल टीके ने 45.27 सेकंड के समय के साथ अपनी हिट जीती और फाइनल में पहुंचे। पुरुषों के 100 मीटर और अनिमेश कुजूर दोनों ही फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। हैमर थ्रो में अमनीत सिंह ने 9वें और परवीन कुमार 11वें स्थान पर रहे। महिलाओं के हेप्टाथलोन में पूजा छठे और अनामिका अनीश 8वें स्थान पर रहीं। विशाल टेके ने 400 मीटर की हिट 2 में 45.27 सेकंड के समय के साथ पहला स्थान प्राप्त किया और सीधे 400 मीटर के फाइनल में जगह बनाई। महिलाओं की 400 मीटर रेस में किरण ने फाइनल में जगह बना ली है।
1: India had a good day in table tennis as well. Shahid Azmi has a report.
4: भारत के लिए टेबल टेनिस में आज का दिन मिला जुला रहा। सबसे बड़ी उपलब्धि दिया चितले और मानुष शाह की जोड़ी ने हासिल की। भारतीय जोड़ी ने मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में हांगकांग की जोड़ी को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए पदक पक्का किया। लेकिन सेमीफाइनल में भारत की चुनौती चीन की मजबूत जोड़ी वांग चुकिन और सुन इंगशा के सामने थी। चीनी जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को सीधे 4 गेम में 4-0 से हराया। इसके साथ ही दिया चितले और मानुष शाह को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। अब मानुष शाह और यशस्विनी घोरपड़े सिंगल्स में भारत की चुनौती आगे बढ़ा रहे हैं। मानुष ने ईरान के बेंजामिन फराजी को 4-0 से जबकि यशस्विनी ने सीरिया के हेंज जाजा को 4-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। उधर हरमीत देसाई और साथियान गणशेखरन की पुरुष डबल्स जोड़ी को जापान के खिलाफ 0-3 से हार मिली। वहीं मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी भी जापान के तोमोकाजू हरिमोटो और हितो शिनोजुका से 3-1 से हार कर बाहर हो गई। महिला डबल्स में भी भारतीय जोड़ियों का अभियान आगे नहीं बढ़ सका।
1: द इंडियन टीम इज गोइंग स्ट्रॉन्ग इन स्क्वैश। शबाब अनवर हैज मोर।
3: योशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार की स्क्वाश मिश्र जोड़ी ने एशियन गेम्स में भारत के लिए पदक पक्का किया। अनुभवी योशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार ने बेहतरीन मुजाहरा करते हुए क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस और जेमिका अरिबांडो को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और भारत का पदक पक्का किया। वहीं अनाहत सिंह और अभय सिंह ने एकल स्पर्धाओं के अंतिम चार में प्रवेश किया। रिकॉर्ड 7वें एशियन गेम्स में हिस्सा ले रही 40 वर्षीय जोशना और अपने पहली बार इन खेलों में भाग ले रहे सेंथिल कुमार ने फिलीपींस की जोड़ी को 30 मिनट से भी कम समय में 11-3 11-5 से हराया। भारतीय जोड़ी के सामने अब शनिवार को सेमीफाइनल में हांगकांग की यू काली और मिंग होंग टैंग की चुनौती होगी। ये का एशियाई खेलों में छठा पदक होगा। उन्होंने 2018 में एकल में कांस्य, 2014 और 2018 में टीम स्पर्धा में रजत तथा 2010 और 2022 में टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीते थे। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम महज 9 मिनट में 11-3 से जीत लिया। दूसरे गेम में फिलीपींस की जोड़ी ने वापसी की कोशिश की, लेकिन जोशना और सेंथिल कुमार ने अपना स्तर बढ़ाते हुए दूसरा गेम 11-5 से जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। उधर महिला एकल में विश्व जूनियर चैंपियन अनाहत सिंह ने क्वार्टर फाइनल में हमवतन तन्वी खन्ना को 11-2 5 11-3 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अनाहत की नजर अब 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक में जगह बनाने पर भी है। पुरुष एकल में अभय सिंह ने स्थानीय खिलाड़ी रोयोनोसुके तोसुकुए को 11-4 11-3 11-6 से हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना पाकिस्तान के इरफान मोहम्मद से होगा। इरफान ने भारतीय वीर चोट्रानी को 41 मिनट में 6-11 11-8 11-3 11-3 से हराया। एशियाई खेलों में पुरुष और महिला एकल के स्वर्ण पदक विजेता 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे, जहां स्क्वाश पहली बार ओलंपिक खेलों का हिस्सा होगा।
1: Was another great day for India in Kabaddi. Here's more from Shabab Anwar.
3: कबड्डी के कोर्ट पर भारत का जलवा बरकरार है। भारतीय टीम दोनों वर्गों के फाइनल में पहुंच गई है और दोनों ही वर्गों में स्वर्ण पदक का बचाव करती हुई नजर आ रही है। शुक्रवार को खेले गए महिला वर्ग में सेमीफाइनल में भारत ने नेपाल को आसानी से 48 के मुकाबले 24 अंकों से पराजित किया। गोल्ड मेडल मैच के लिए भारत का मुकाबला कल मजबूत प्रतिद्वंदी ईरान के साथ होगा। दूसरे सेमीफाइनल में ईरान ने चीनी ताइपेई को 23-19 से शिकस्त दे दी। आज के सेमीफाइनल में भारत ने 3 ऑल आउट प्राप्त किए और इसमें पूजा, संजू देवी और सोनाली सिंह का जबरदस्त प्रदर्शन रहा। उधर पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को 28 के मुकाबले 66 अंकों से पराजित करके फाइनल में जगह बनाई। पुरुष वर्ग के स्वर्ण पदक मुकाबले के लिए भी भारत की टक्कर ईरान से ही होगी। पुरुष वर्ग के दूसरे सेमीफाइनल में ईरान ने चाइनीज ताइपे को एक तरफा मुकाबले में 59-21 से हरा दिया।
1: There was good news and bad news from the badminton courts. Shabab Anwar gives you all the details.
3: बैडमिंटन ने आज भारत को सबसे बड़ा धचका तब लगा जब गत विजेता सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के पहले ही राउंड में बाहर हो गए। भारतीय जोड़ी को थाईलैंड के पक्कापोन तिरेश साकुल और पिशाई सुफुन की जोड़ी ने 21-12 19-21

0: इस 21-14 से हराया है। सात्विक चिराग ने पिछली बार एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन इस बार पहले ही राउंड में बाहर हो गए। भारत की तनिषा क्रोस्टो और ध्रुव कपिला ने मिक्स डबल्स में शानदार दिग्गज की। भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की वर्ल्ड नंबर 10 जोड़ी को 22-20 24-22 से हराया। उधर महिला एकल मुकाबलों में उन्नति हुड्डा ने अच्छी शुरुआत की और अपनी प्रतिद्वंदी 10 से पराजित किया। उधर महिला डबल्स के पहले दौर में भारत की त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद ने पसांग ह्यू और थाइनलू की जोड़ी को 21-16, 16-21, 21-16 से हराया। दिन के अंतिम मुकाबले में पुरुष वर्ग के तहत पहले राउंड में भारत के हरिहरन और अर्जुन की जोड़ी इंडोनेशियाई जोड़ी से अपना मुकाबला 14-21, 11-21 से हार गई।
1: It was a tough test for India versus Japan in women's hockey today. Let's find out what happened. The Indian women's hockey team secured its berth in the Asian Games 2026 semi-finals after beating host Japan 3-1. Elham Rasood, Ishika Chaudhary and Navneet Kaur scored the goals for India, while S. Kobayakawa hit the board for the hosts. Having won all four group matches till now, India, who beat Japan to win the bronze medal at Hangzhou 2023, currently top Pool B with 12 points and are assured a top 2 finish and by extension a place in the semis. The Indian women's hockey team will face Singapore in its final Asian Games Pool B match on Sunday. The Indians have been striving hard in the swimming arena. Let's hear what Sakshi Manwal had to say.
2: In the men's 200-meter backstroke heats, Rishabh Das clocked 2 minutes 00.53 seconds to finish 4th overall, while Utkarsh Patil finished 8th in 2 minutes 02.13 seconds. Once the finals of the men's 200-meter backstroke event started, both Indians were in this final, but neither finished amongst the top three. The 21-year-old Rishabh clocked 1 minute 58.77 seconds in the 200-meter backstroke finals to finish 6th, but with a new national record to his name by taking more than a second off his previous mark. Utkarsh Patil was 7th in 2 minutes 00.94 seconds. Sajan Prakash also progressed after finishing 6th overall in the men's 200-meter butterfly heats with a timing of 2 minutes 00.94 seconds. In the finals, the veteran swimmer, however, finished 7th in men's 200-meter butterfly. He did not start in the 100-meter butterfly but came up with a valiant effort today. There was disappointment in the men's 50-meter breaststroke and 400-meter freestyle. Dhanush Suresh finished 21st in the 50-meter breaststroke event in 28.40 seconds, while Anish Kaura and Dakshan Shashikumar finished 17th and 18th, respectively, in the 400-meter freestyle event. None of the three swimmers could advance to the finals.
1: It was a mixed day for the Indians in the boxing arena. Shahid Azmi has more.
3: बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए मिलीजुली खबर सामने आई है। पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में सचिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जबकि महिला 54 किलोग्राम वर्ग में 16 में ही खत्म हो गया। पहले बात सचिन की, उन्होंने जॉर्डन के पूर्व एशियाई चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद अबू जाजे को कड़े मुकाबले में 4-1 के निर्णायक फैसले से शिकस्त दी। सचिन ने शुरुआत से ही तेज रफ्तार और सटीक पंचों के साथ मुकाबले पर दबाव बनाए रखा। अबू जाजे ने कोशिश की, लेकिन सचिन की चुस्ती के आगे उनकी चुनौती कमजोर पड़ गई। भारतीय मुक्केबाज ने लगातार सटीक पंच लगाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ सचिन ने क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। अब उनके सामने जापान के की चुनौती होगी, जो विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता रह चुके हैं। वहीं महिला 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति पवार को राउंड ऑफ 16 में हार का सामना करना पड़ा। प्रीति को उत्तर कोरिया की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पैंग चोल मी ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से मात दी। प्रीति ने मुकाबले में चुनौती पेश की, लेकिन पैंग चोल मी ने सभी जजों का फैसला अपने पक्ष में करते हुए अगले दौर में जगह बना ली। यानी बॉक्सिंग में सचिन ने भारत की उम्मीद कायम रखी, जबकि प्रीति पवार का अभियान यहीं समाप्त हो गया।
1: So how did the weightlifting contingent do for India today? Shabab Anwar tells us the report.
0: भारोत्तोलन में आज सबकी निगाहें 26 वर्षीय एथलीट और पिछली राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाली और इस वर्ष की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली निरुपमा देवी पर थी, लेकिन उन्होंने दोनों भार वर्ग में निराश किया और पहले ही राउंड में बाहर हो गयी। निरुपमा देवी ने 61 किलोग्राम वर्ग में 8वां स्थान प्राप्त किया स्नैच में, जबकि 63 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 217 किलोग्राम वजन के साथ 7वें स्थान पर रही।
1: Indians were in action in Canoe. Sakshi Manwal has all the details.
2: It was a disappointing day for India in canoe sprint. India's Prohit Baroy and Prasanna Kumar Chempadil Satyaprakash finished fifth in the men's kayak double 500-meter semi-final, clocking 1 minute 40.308 seconds. Then they competed in the final B, where they finished third among four pairs in 1 minute 40.411 seconds. In the women's canoe double 500-meter semi-final, Megha Pradeep and Neha Devi finished fourth among five pairs with a timing of 2 minutes 8.306 seconds and did not qualify for the final. The Indian women's kayak 4-500-meter quartet of Dhana Manjuri Devi, Pooja, Sonia Devi and Parvati Geeta finished 8th in the final 8 with a timing of 1 minute 45.670 seconds. Overall, a disappointing day in canoe sprint for India.
1: There was lots of fencing action today for the Indian contingent. Shabab Anwar has more.
0: भारत को तलवारबाजी की टीम स्पर्धा के दोनों वर्गों में महिला और पुरुष दोनों जगह पराजय का सामना करना पड़ा और पहले ही मुकाबले को हारकर भारतीय खिलाड़ी पदक की दौड़ से बाहर हो गए। सबसे पहले पुरुष टीम का फाइनल राउंड 16 मुकाबला हुआ, जिसमें हांगकांग चीन के हाथों भारत को 45-27 से पराजय का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व आदित्य, हिमांशु सिंह, तेजस पाटिल और कर रहे थे। वैसी स्पर्धा के महिला वर्ग में भी भारत को हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में उज्बेकिस्तान ने भारत को 45 के मुकाबले 29 अंकों से पराजित किया। इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी अनुप्रिया चौधरी, तनिष्का खत्री, यश वीरत कौर।
1: India is making its debut in surfing. Let's find out what happened. SS Gayan, Kamli Prakash, Kishore Amrasu and Shivraj Babu progressed to the women's and men's shortboard in surfing. India is making a historic debut in surfing at the 2026 Asian Games. The surfing events are taking place from September 25th to 28th at the Pacific Long Beach in Tahara City. Coached by Frenchman Samay Rabou, the team views this exposure as a crucial stepping stone towards qualification for the LA Olympics in 2028. India was striving for a medal in equestrian. Let's hear what Shahid Azmi had to say.
3: Asian Games 2026 में घुड़सवारी टीम रेसेस इवेंट में भारत पदक से चूक गया। भारतीय टीम 201.971 अंक के साथ चौथा स्थान हासिल कर सका। चीन ने स्वर्ण जबकि जापान ने रजत और दक्षिण कोरिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत की ओर से श्रुति वोरा ने 68.059 अंक जबकि 68.353 और जय सूद ने 66.559 अंक हासिल किए। हांगझो एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतने वाली भारतीय टीम इस बार पोडियम पर जगह नहीं बना सकी।
1: Esports is grabbing the nation's attention. Sakshi Manwal has the latest from Aichi Nagoya.
2: India went down 0-2 to South Korea in Pokemon Unite. Both the games were won by South Korea in a very commanding and dominating manner, and they ultimately went on to win the series 2-0.
1: So after another action-packed day, where is India in the medals tally? Let's find out.
2: भारत की पोजीशन मेडल टेबल पर 12th स्पॉट पर है। कुल मिलाकर भारत के पास इस वक्त 22 मेडल्स हैं, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, जो क्रिकेट और शूटिंग से आए हैं, 9 सिल्वर हैं, जिसमें से 5 शूटिंग से, 1 वेटलिफ्टिंग से, 2 एथलेटिक्स से और 1 वुशु से आया है, और 11 ब्रॉन्ज हैं, जिसमें से 4 शूटिंग से, 1 मिक्स्ड मार्शल आर्ट से, 1 सॉफ्ट टेनिस से, 1 बैडमिंटन, 1 रोइंग, 2 एथलेटिक्स और 1 टेबल टेनिस से आया है। नाउ लेट्स आल्सो हैव अ लुक एट द टॉप 3 पोजीशंस इन द मेडल टेबल। पहला स्थान लिया हुआ है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने विद अ टोटल ऑफ 157 मेडल्स, जिसमें से 97 गोल्ड हैं, 36 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज। दूसरे स्थान पर है जापान, जिसके पास कुल मिलाकर 113 मेडल्स हैं, 27 गोल्ड, 42 सिल्वर, 44 ब्रॉन्ज। और तीसरे स्थान पर है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसके पास कुल मिलाकर 64 मेडल्स अभी तक हुए हैं, जिसमें से 13 गोल्ड हैं, 17 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज मेडल्स।
1: It's another exciting day of the Asian Games 2026, with the Indian athletes looking to improve their medal tally on day 7 in Aichi Nagoya. In athletics, Savan Barwal and Karthik Arkera will try to go for gold in the men's marathon final. There was gold in shooting today. Will there be one tomorrow? As the women's 50-meter 3B position, individual and team final will take place with Ashi Chaudhary, Tilutuma Sen and Vidarsa Vinod in action. Raju Nawat and Neha Devi will try to get India a medal in the canoe sprint mixed canoe double 500 final. There's also mixed doubles semi-final action with Josh Achinappa and V. Senthil Kumar flying the Indian flag. Early morning at 9:30 a.m., it's a big women's kabaddi final between India and Iran. There's also women's single semi-final action in squash with Anahat Singh flying the Indian flag, while Abhay Singh will go for gold in his men's single squash semi-final versus Mohammad Irfan of Pakistan. For the Indian men's hockey team, it's a big pool encounter when they battle Japan. And as their female counterparts are doing, the Indian men will try to go for gold versus Iran in the kabaddi final. There are a lot of expectations from Tajinder Pal Singh Tor and Karamveer Singh in the men's shot put.

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्रों में आपका स्वागत है. आज की आर्थिक खबरों की बारीकियों पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार एके भट्टाचार्य स्टूडियो में आमंत्रित हैं. नमस्कार मिस्टर भट्टाचार्य, मार्केट मंत्रों में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार, धन्यवाद.
1: और अब हेडलाइंस के साथ अर्जुन चौधरी.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड विद मॉडेस्ट गेन्स. सेंसेक्स राइजेस 315 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स अबव 23,100. Industry needs to be remain globally competitive to attract foreign capital, says Chief Economic Advisor V. Anantha Nageswaran. And global crude oil prices decline.
1: प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक मामूली बढ़त पर हुए बंद. सेंसेक्स 315 अंकों की वृद्धि में रहा. निफ्टी 23,100 के स्तर को पार कर गया. विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए उद्योग जगत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बने रहना जरूरी है, कहा प्रमुख आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने. और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में आई गिरावट.

0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब चलते हैं शेयर बाजार की ओर. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 0.43% की तेजी से 315 अंक बढ़कर 73,896 पर बंद हुआ. निफ्टी 0.34% की बढ़त से 77 अंक ऊपर 23,141 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तारित बाजार में रुख मिला जुला था. मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% से अधिक की गिरावट में रहा. हालांकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 0.1% से अधिक की बढ़त दर्ज हुई. मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच बाजार आज सुबह सपाट खुले थे. अधिकांश सत्र में सेंसेक्स और निफ्टी पर दबाव बना रहा, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और निचली कीमतों पर हुई खरीदारी के समर्थन से कारोबार के आखिरी घंटे में बाजार में तेजी आ गई.
0: Benchmark domestic equity indices ended on a positive note today. Sensex rose 315 points, or 0.43%, to close at 73,896. Nifty gained 77 points, or 0.34%, to settle at 23,141. The broader market at the National Stock Exchange displayed a mixed trend. The mid-cap 100 index dropped over 0.1%, while the small-cap 100 index rose more than 0.1%. Markets opened flat this morning amid mixed global cues. Sensex and Nifty stayed subdued through most of the session, but staged a recovery in the final hour, supported by a decline in crude prices and value buying.
1: और कंपनियों पर नजर डालें तो सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 20 के शेयर आज तेजी में रहे. सबसे अधिक बढ़ने वाले शेयरों में एक्सिस बैंक 2.8%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.2% से अधिक और एशियन पेंट्स का शेयर 1.9% की वृद्धि में रहे. इसके विपरीत ट्रेंट का शेयर 1.4%

0: प्रतिशत गिर गया। इंफोसिस के शेयर में 0.8% की गिरावट आई और कोटक महिंद्रा बैंक 0.5% के नुकसान में रहा।
1: In the sectoral indices in the Bombay Stock Exchange, 21 out of the 28 sectors edged upward, with commodities remaining unchanged. Among the top gainers, consumer durables jumped 1.1%, auto surged over 0.9%, and realty rose over 0.6%. Conversely, hospitals declined 2.1%, healthcare lost 0.5%, and oil and gas, as well as telecommunications, dipped over 0.2%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 2,210 companies advanced, 2,146 companies declined, and 220 companies remained unchanged.
0: और रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 14 पैसे की मजबूती दर्ज करता हुआ 95.82 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। मिस्टर भट्टाचार्य, कल की जो भारी गिरावट आई उसके बाद आज जो कारोबार हमने देखा है 300 अंकों से अधिक बढ़ा है सेंसेक्स, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या रीजन रहा आपके अनुसार?
2: पहली बात तो ये है कि रिकवरी हुई है, कल जैसे आपने कहा कि बहुत भारी गिरावट थी, उसके बाद थोड़ी बहुत जो वैल्यू बाई हुई है उसके लिए ये उसके लिए जिम्मेदार है, पर ये जो रिकवरी जो हुई है उसकी जो कल की जो जो सेटबैक जो या लॉस जो थी उसे आधी भी रिकवरी नहीं हुई है, तो मार्केट में अभी भी काफ़ी अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई है मार्केट के साथ, और उसका एक एक प्रधान इंडिकेशन ये है कि आज की भी जो जो गेंस हुई हैं उसमें भी अगर आप देखें तो FII नेट सेल किया है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ज़रिए से ये मार्केट में ये चढ़ाव आया है, तो इसका मतलब यही है कि जब मार्केट गिरती है उस टाइम में भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं, पर FII की जो मतलब बिकवाली के कारण वो मार्केट नीचे जाती है, और जिस समय मार्केट चढ़ती है उस समय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन उसी तरह वो सटीक रहते हैं पर FII भी निकल जाते हैं। तो इसका एक एक एक कारण यही है कि जो FII अभी भी इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं किस तरह से इंटरनेशनल US मार्केट का रुख देखते हुए, क्योंकि वहाँ पे यील्ड्स अभी भी बढ़ती रही है और इसीलिए वो जो ही एक मौका देखते हैं, अगर रुपए में थोड़ी बहुत जान आ जाती है उससे वो अगर मान लीजिए रुपए थोड़ा अप्रिशिएट करती है तो वो भी एक इंसेंटिव होता है उनके लिए पैसे ले जाने का। और लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम जो है इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, इतना लिक्विडिटी ड्रेन आउट हो रहा है मार्केट से, अगर आप IPO कहेंगे या फॉरेन एक्सचेंज जो इन्फ्लोज जो आए हैं उसके लिए लिक्विडिटी है, उसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो OMO लिक्विडिटी ड्रेन आउट करने के लिए हुआ है वो भी एक कारण है ये इस मार्केट की चढ़ाव और उतराव ज़्यादा चढ़ाव कम।
0: तो कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि जो FIIs हैं उनका फोकस अलग फैक्टर्स पे है और डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं उनका शायद दे आर लुकिंग इनवर्ड, जो हमारी मजबूती है।
2: देखिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हमारे देश की जो स्टॉक मार्केट की जो एक बुनियादी ढांचा जो बदल रहा है वही प्रतिफलित करता है कि हमारे इसमें अगर आप पिछले 6 साल में ये ट्रेंड देखें कि डायरेक्ट इक्विटी कम हो गई है, इंश्योरेंस कम हो गया है, बैंक सेविंग्स कम हो गया है, पर एक चीज़ जो बढ़ता रहा है वो है म्यूचुअल फंड्स, और वो म्यूचुअल फंड की जो पिछले 6 साल की जो जो जो आंकड़े दिखते हैं वो करीबन 10% की वृद्धि हुई है, हालांकि सारे जो मैंने कैश बोलिए या डायरेक्ट इक्विटी बोलिए, इंश्योरेंस बोलिए या पेंशन फंड्स बोलिए, ये सारों में डिक्लाइन हुआ है और उस डिक्लाइन को कॉम्पेंसेट किया है म्यूचुअल फंड्स ने, और म्यूचुअल फंड्स ही आज डायरेक्ट जो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की पहली एक उनकी, तो ये मैं समझता हूँ कि जो मार्केट में जो अभी भी जो अभी जो जो जो, जो जान जो है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और पर्टिकुलरली जो म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के जरिए बची हुई है।
1: AKB, let's now come to a specific

0: इस संदर्भ में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रदर्शन का आकलन करना महत्वपूर्ण हो गया है। श्री नागेश्वरन ने कहा, निवेशक संरक्षण, कर नीति की निश्चितता और स्थिरता, कुशल प्रतिभा की उपलब्धता और लॉजिस्टिक्स भी निवेश निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक ब्याज दर का बदलता परिवेश भी पूंजी की लागत और सीमा पार निवेश प्रवाह पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। तो क्या लगता है आपको, जो प्रतिस्पर्धा की उन्होंने बात कही है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा की, और ये जो इम्पोर्टेंट उन्होंने फैक्टर्स बताए हैं, कैसा आप परिदृश्य देखते हैं या आने वाले भविष्य में क्या संभावनाएं देखते हैं?
1: बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, और नागेश्वरन जी ने पहले भी इसके बारे में इनकी हमारी दृष्टि आकर्षित किया है। जो जिस तरह से हमारी जो देश की आर्थिक वृद्धि दर चली है पिछले 3 दशक में, और इस वक्त जो वातावरण जो है, जो परिस्थितियां जो हैं, वो इतनी अनसर्टेन है, अनिश्चयता से गुजर रही हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटी और जियोपॉलिटिकल रिस्क जो बढ़ गई हैं, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी की जो रिस्क बढ़ गई है, उस समय उनका ये कहना है कि हालांकि जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में हमें स्टेबिलिटी लानी है, जिससे कि हमारी कॉम्पिटिटिवनेस या प्रतिस्पर्धा हमारी बरकरार रहे, पर उसके साथ साथ ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए और बढ़ाने के लिए एक नई मॉडल की जरूरत है, और उसी की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज में उनका यही कहना है कि जो अब तक हम करे आ रहे हैं वो शायद काफी नहीं होगा, आगे हमें और भी जो आगामी काल के लिए हमें उसको
0: जो सुधारों की गति है वो जारी रहनी
1: जरूरी है।
2: In more news, the government, in consultation with the Reserve Bank of India, RBI, will borrow 7,86,000 crore rupees in the second half of the current financial year. This includes a sovereign green bonds issuance of 15,000 crore rupees, according to an official statement of the Finance Ministry. The borrowing will be executed through 23 weekly auctions. With this, the total borrowing for the full financial year is expected to reach 15.9 lakh crore via dated securities. For the benefit of our listeners on Akashvani, tell us, what are the sovereign green bonds and the debt to GDP ratio that India economy is facing?
1: Well, this development has greater significance for how the government is going to play out in its fiscal consolidation program. Green bonds is a very small part of the overall borrowing, as you can make out that out of 15 lakh crore of borrowing or 16 lakh crore borrowing, you have a very small amount of green bond, but it sends out a very positive signal to the market. But the bigger signal to the market, a very reassuring signal at that, is that the government's commitment on 4.4% of fiscal deficit, which is actually what is composed of these borrowings, will, as of now, will remain under check, and the government is preparing for meeting that target. So from 4.4, it is supposed to come down to 4.3 in the current year. And if this number is what the government is planning to borrow in the second half, which means that it will not exceed its borrowing levels
2: as per the FRBM.
1: As per the FRBM and as far as the commitment that the government made in Parliament. So for fiscal hawks and the fiscal consolidation program watchers, this is really a piece of good news.
0: और लेते अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है और उत्पादन, निवेश तथा निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया का उद्देश्य ऐसा बुनियादी ढांचा, उद्यम और नवाचार तैयार करना है, जिससे भारत विकास और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ सके। सो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारा उत्पादन बढ़ा है, उसकी बात कही कि 2014-15 में 1.9 लाख करोड़ रुपए था, जो बढ़कर अब 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और रक्षा उत्पादों का उन्होंने जिक्र किया, 46,429 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपए।
1: इसमें
0: इम्पोर्टेंट है नए जो सेक्टर्स हैं उसमें।
1: एक अभी तक हमने प्रधानमंत्री जी को सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात, अब लग रहा है कि एक्चुअल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो काम हुआ है उसके ऊपर वो हमारा दृष्टि आकर्षित करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स

0: प्रोडक्शन में हालांकि ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन का हुआ है, पर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में पिछले 3-4 सालों में बहुत ही एक अभूतपूर्व एक वृद्धि, एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, प्रोडक्शन बढ़ा है, और उसके साथ साथ जो डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो प्राइवेट सेक्टर के आने से इसमें एक नई तेजी आई है, नई रफ्तार आई है। तो मैं समझता हूँ कि डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स और दोनों साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके वो हमारे देश की जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को काफ़ी बढ़ावा दे सकती है।
1: In more news, SEBI board has approved a slew of reforms to deepen market participation, widen investment avenues and simplify regulatory norms. At its 215th meeting, SEBI approved a comprehensive overhaul of regulations governing portfolio managers. Under the new regulations, portfolio managers will be permitted to invest in IPOs, primary debt issuances and certain foreign securities while also providing a route for investment in direct mutual fund plans.
2: उधर देश का विदेशी मुद्रा भंडार 18 सितंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान लगभग 14.9 अरब डॉलर कम होकर 765.9 अरब डॉलर पर आ गया। अभी भी बहुत एक हेल्दी लेवल है, आप कहेंगे?
0: जरूर, क्योंकि जो FCNR भी जो करेंसी स्वैप के आधार में जो पैसा आया था वो अभी भी बरकरार है, और इससे दिखा रहा है कि सरकार की जो नीति थी वो एकदम सही जगह थी।
1: The new merchant discount rate framework will come into effect from the 15th of next month. Under this framework, unified payments interface UPI transactions of up to 2,000 rupees will attract zero MDR. National Payments Corporation of India said that the framework is in line with the international payment system. Most global payment systems, including digital public infrastructures, have economic models that support infrastructure and innovation. It added that India's approach continues to prioritize accessibility, scale and inclusion. The US and Iran are reportedly exploring a phased path when their conflict with Iran proposing to reopen the Strait of Hormuz in return for the lifting of the US blockade and other economic measures. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said Tehran had conveyed a proposal through intermediaries under which the strait would be reopened if its conditions were met. These include an end to hostilities on all fronts within 7 days, the lifting of the US blockade on Iranian ports, the release of frozen Iranian funds and a waiver of oil sanctions. Let's combine this with the crude oil story as well. Global crude oil prices dropped today as markets assess the possibility of a truce between US and Iran. Brent crude was trading 1.7% down at $104.82 per barrel. WTI crude was trading 2.2% lower at $92.49 per barrel. At the time of writing this report, even Urals oil is at $99 per barrel. Possibility of a truce, slight correction in the oil market. What is the strength you feel in the talks and the response from Iran regarding reopening of the strait within 7 days?
0: The markets are reacting to statements made by the various leaders, and I think the crude oil market has also responded to that. But the very fact that peace talks are going on and there is some hope on the horizon, and if the market prices of crude oil are softened a bit, I think it's good news for India, because India is dependent on this crude oil, and as you rightly pointed out, even Ural prices have gone up. So the discounts that India used to enjoy earlier is no longer there. So that crude oil prices are under check, if not going up, it's good news for India, India's external sector and macroeconomy.
2: चलते हैं कीमती धातुओं की ओर। भारतीय सराफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 0.9% बढ़कर 1,52,113 रुपये प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंची। भारतीय सराफा और आभूषण निर्माता संगठन द्वारा जारी समापन दरों के अनुसार चांदी का मूल्य 1.8% बढ़कर 2,32,350 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। जिस तरह की अनिश्चितता है, नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में जो सोना चांदी है उसकी कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन अभी हम एक स्थिरता देख रहे हैं, तो
0: स्थिरता भी है और फेस्टिवल सीजन का आने वाला है, और इस समय डिमांड भी थोड़ी बहुत बढ़ती है, और अनसर्टेनिटी में लोग गोल्ड की तरफ, सिल्वर की तरफ ज़्यादा जाते हैं, और सिल्वर के साथ इंडस्ट्रियल आउटपुट का भी एक संपर्क है.
2: तो आपको लगता है कि कीमतें बढ़ने की संभावना
0: है और इंडिकेशन जो आ रही है आज की मार्केट में भी थोड़ा बढ़ा हुआ.
2: समय हमें बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका.
0: नमस्कार. धन्यवाद.
1: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices end with modest gains. Sensex rises 315 points. Nifty settles above 23,100. Industry needs to remain globally competitive to attract foreign capital, says Chief Economic Advisor V. Ananta Nageswaran. And global crude oil prices decline. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

101.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। दोस्तों, मन की गहराइयों में ना वो गीत जो आज भी आपके मनमीत बने हुए हैं, कुछ ऐसे ही अंदाज से सजी गीत मेरे मनमीत को लेकर एक बार फिर साथ हूँ मैं रोहिणी। दोस्तों, कुछ साथ ना दिलों की यादों को समय समय के साथ महकाते रहते हैं। वो कहते हैं ना, कुछ लोग किस्मत में नहीं दिल में लिखे होते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के लिए पर उम्र भर याद रहते हैं। कुछ इन सदाबहार गीतों की तरह, जी हाँ, आइए सुनते हैं गीत मेरे मनमीत का ये प्यारा अंदाज 101.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और फिलहाल ये गीत याराना फिल्म से आपकी नजर करते हैं किशोर जी की आवाज में। इस गीत को अल्फाज दिए अंजन साहब ने और संगीत बद किया राजेश रोशन जी ने। आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत 101.1 मेगाहर्ट्ज़।

सुन रहे हैं गीत मेरे मन में। तो और श्रोताओं, इस प्यारी सी चांदनी रात में क्या धरती ये नहीं सोच रही होगी इस चांद को देखकर कि काश ये चांद और करीब आ जाए, कुछ पल के लिए चांदनी सीने में उतर जाए, लगा लूं एक बार गले और तसल्ली हो जाए, कभी तो चांद धरती की बाहों में समा जाए। कुछ प्यारे ख्यालात और ये प्यारा एहसास इस समा को और भी खूबसूरत बनाएगा। ये अगला गीत आप सुनेंगे जब जब फूल के लिए फिल्म से, और इस गीत को आवाज दी है लता जी ने। आइए सुने ये खूबसूरत अंदाज।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह खूबसूरत अंदाज गीत मेरे मनमीत में आप सुन रहे थे श्रोताओं। जी हाँ, फिल्म थी रजिया सुल्तान और आवाज बेहद प्यारी लता जी की। इस आवाज को बोल दिए जानिसार अख्तर साहब ने और संगीत से सजाया खयाम साहब ने। आइए ये अगला प्यारा अंदाज सुने द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से आशा जी की आवाज में, आनंद बख्शी साहब के बोल और आर डी बर्मन साहब का खूबसूरत दिलकश अंदाज। दिलों की ये प्यारी आवाज।

101.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मन मीत के कुछ ऐसे अंदाज गीतों के आप तक पहुंच रहे हैं जो दिल को बहुत सुकून पहुंचा रहे हैं और ये कहें कि दिल की बातों को बड़ी गहराई से आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल समय हमें इजाजत नहीं देता कि आज के इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, तो फिलहाल इस गीत के साथ आपसे लूंगी इजाजत, आपको छोड़े जाती हूं आपके अपने पसंदीदा एफएम गोल्ड के साथ और इस प्यारे से गीत के साथ जो कि मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से ये गीत है लता जी की आवाज में। आइए इसको सुनते हैं। इस गीत को अल्फाज दिए हैं अंजान साहब ने और संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉ. जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड ने व्यापारियों के कल्याण, कारोबार सुगमता, डिजिटल सशक्तिकरण, वित्तीय सहायता, केंद्र राज्य समन्वय और निर्यात संवर्धन से जुड़े उपायों की समीक्षा की है। बोर्ड की 11वीं बैठक में वस्तु और सेवा कर, GST, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, MSME व्यापारियों की शिकायतों के निवारण, खुदरा विक्रेताओं, निर्माताओं, निर्यातकों तथा सेवा प्रदाताओं के लिए संस्थागत सहयोग मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 SIR के अंतर्गत 29 और 30 सितंबर को दिल्ली के कॉलेज, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित करें। मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए पंजीकरण के लिए योग्य 18 से 25 साल की उम्र के छात्रों को फॉर्म 6 भरने में बूथ लेवल ऑफिसर BLO सहायता करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आवश्यक फॉर्म और सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, आवेदनों का रिकॉर्ड रखने, दूसरे जिलों या विधानसभा क्षेत्र से संबंधित फॉर्म संबंधित अधिकारियों को भेजने और शिविरों का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया है। शंघाई में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और निशिगंधा में पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है बाबू।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। रफ्ता रफ्ता दिले बेताब ठहर जाएगा, रफ्ता रफ्ता दिले बेताब ठहर जाएगा, रफ्ता रफ्ता तेरी नजरों का असर आएगा, रफ्ता रफ्ता तेरी नजरों का असर जाएगा, धूप और छांव मुसल्लम मगर अपनी हद में, धूप और छांव मुसल्लम मगर अपनी हद में, वक्त पाबंद नहीं है कि ठहर जाएगा। रोशनी में है चरागों के तले तारे की, रोशनी में है चरागों के तले तारे की, हम समझते थे कि माहौल संवर जाएगा, हम समझते थे कि माहौल संवर जाएगा। और अगला गीत फिल्म दो रास्ते से, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है चांदनी, आवाज है लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। एक पुराना खत मिला, एक पुराना खत मिला कपड़ों के नीचे किसी संदूक की तह में, जैसे बीते बरसों ने अपनी कोई सांस छिपा रखी हो। स्याही फीकी थी पर संबोधन में वही गर्माहट थी। अक्षर थोड़े कांपते हुए फिर भी पहचानने में एक पल भी नहीं लगा। उस पन्ने पर किसी ने प्रेम लिखा था, किसी ने घर का हाल, किसी ने लौट आने की आस, और किसी ने बस इतना कि अपना ख्याल रखना। कितना छोटा था वाक्य पर उसमें कितना बड़ा संसार। बाहर की दुनिया उंगलियों की गति से आगे निकल गई। संदेश क्षण भर में दूर देश तक पहुंचने लगे, मगर इस कागज ने अब भी अपनी धीमी चाल नहीं छोड़ी। वह आज भी शब्दों के बीच एक चेहरा संभाले है, एक आवाज, एक मौसम, एक ऐसा अपनापन जिसे किसी स्क्रीन पर उतारा नहीं जा सकता। मैंने खत फिर तह किया, इस बार संदूक में रखने के लिए नहीं, अपने समय से बचा कर रखने के लिए, अपने समय से बचा कर रखने के लिए। आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में अगला गीत आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है तीसरी कसम।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और निशिगंधा

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दे कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर, कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। अभी छोड़े जाते हैं आपको एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है अर्पण, आवाज है लता मंगेशकर की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: देखिए हमारा फाइव स्टार होटल है, यहाँ पर हमेशा कैबरे के प्रोग्राम ही पसंद किए जाते हैं। कवाली का प्रोग्राम
1: मैनेजर साहब, किस तक तक हमारा फोक का ऐसा प्रोग्राम नहीं कर देखने वाले नाचने की पंजाबूर पार्टी है।
2: काम भी देख लीजिए ना। गुड मॉर्निंग मैनेजर।
1: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये मेरी बेटी है सोना।
0: ओ,
1: हमारे ट्रूप के तरह के प्रोग्राम को करती है।
0: ओ, प्लीज सिट डाउन सोना।
2: शुक्रिया।
0: चाय?
2: जी नहीं। मैनेजर साहब, एक प्रोग्राम करने का मौका दीजिए, उसको मैं पूरा सीजन। बाबा
0: ओके,
1: धन्यवाद।
2: थैंक यू वेरी मच।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सप्ताह में 3 बार चलने वाली ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण गंतव्यों को जोड़ेगी। मंत्रालय ने कहा कि ये नई ट्रेन सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। इससे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रदर्शन से संबंधित केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की अगस्त महीने की 52वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष अगस्त में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने 2,42,000 से अधिक शिकायतों का निवारण किया। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 SIR के अंतर्गत 29 और 30 सितंबर को दिल्ली के कॉलेज, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आवश्यक फॉर्म और सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, आवेदनों का रिकॉर्ड रखने, दूसरे जिलों या विधानसभा क्षेत्र से संबंधित फॉर्म संबंधित अधिकारियों को भेजने और शिविरों का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया है। जापान एशिया खेलों के कल 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलिंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. He highlighted the considerable improvement in rural infrastructure and noted that women across the country have also become increasingly self-reliant and economically empowered. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction yesterday with Seva Yatris, travelling on the Yatra from Varanasi to Vatnagar under Seva Sankalp Abhiyan. He emphasized the importance of social service, social reform, and

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत सुहाने की खूबसूरत सी महफिल और आपके साथ हूं मैं जयती। आप सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में आज जो पहला गीत आप सुनेंगे, आवाज है मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम है चिराग।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। नदी किनारे कांस खिले, नदी किनारे कांस खिले जैसे उजली पात, दूर तलक फैली हुई चांदी की सौगात। हवा चली तो झूम उठे लहराए वन फूल, शरद उतर आई जैसे धरती के प्रतिकूल। नहीं यह तो ऋतु का सबसे कोमल रूप, यह तो ऋतु का सबसे कोमल रूप। और अब अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है प्यासा सावन।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने, और आपके साथ हूं मैं जयति। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है 1942 अ लव स्टोरी, आवाज है कविता कृष्णमूर्ति की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने और आपके साथ हूं मैं जयती। रोशनी तेज करो चांद सितारों अपनी, रोशनी तेज करो चांद सितारों अपनी, मुझको मंजिल पे पहुंचना है सहर होने तक, मुझको मंजिल पे पहुंचना है सहर होने तक। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में और फिल्म

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। कभी अक्षर भी हाथों की तरह पहचाने जाते थे, कभी अक्षर भी हाथों की तरह पहचाने जाते थे। लिखावट देखते ही मन कह उठता था, हाँ यह उसी का है, हाँ यह उसी का है। किसी पन्ने पर माँ की चिंता खिली थी, कहीं पिता का संक्षिप्त स्नेह, कहीं पिता का संक्षिप्त स्नेह, कहीं प्रेम ने संकोच से अपना नाम लिखा, कहीं प्रेम ने संकोच से अपना नाम लिखा। हर पत्र के साथ एक मन यात्रा करता था, हर पत्र के साथ एक मन यात्रा करता था। डाकखाने से निकलकर गलियों पगडंडियों शहरों को पार करता, किसी दरवाजे तक पहुंचता और फिर एक जोड़ी आंखों में उतर जाता, और फिर एक जोड़ी आंखों में उतर जाता। तब उत्तर आने में दिन लगते थे, मगर हर दिन उस व्यक्ति का हिस्सा बन जाता था जिसके आने की खबर एक कागज में बंद थी, एक कागज में बंद थी। और अब चलते चलते याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। अभी छोड़ जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है साजन, आवाज है SP बाला सुब्रमण्यम की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इससे हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेमा सानी चंद्र शेखर ने कहा है कि राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला 2026 महिला स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण कारीगरों और महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का बिक्री का मंच प्रदान करेगा। विजयवाड़ा के पुन्नमी घाट पर व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के बाद उन्होंने कहा कि ये मेला 8 से 22 अक्टूबर तक लगभग 600 स्टॉलों तक के साथ आयोजित किया जाएगा। देशभर से लगभग 2500 प्रतिभागियों के हथकरघा, हस्तशिल्प, खाद्य और अन्य ग्रामीण उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री करने की उम्मीद है। डॉ. पेमा सानी ने कहा कि ये मेला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की ब्रांडिंग, बाजार संपर्क और सीधी बिक्री को बढ़ावा देगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान योजना के नियमों और निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने 4 सदस्यीय टीम गठित की है। ये टीम राज्य व्यापक स्वास्थ्य और एकीकृत सेवा एजेंसी साचिस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रही है। राज्य व्यापक स्वास्थ्य और एकीकृत सेवा एजेंसी साचिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्चना वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं का आकलन करने के लिए औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इस वर्ष पीएम स्मृति चिन्ह ई नीलामी में प्रमुख आकर्षण बनी हुई है। इसमें राज्य की भक्ति परंपरा, हस्तशिल्प, चित्रकला, वस्त्र और साहित्यिक विरासत को दर्शाने वाली कलाकृतियां शामिल हैं। नीलामी सूची में ओडिशा के कई पारंपरिक हस्तशिल्प भी शामिल है। इनमें कटक की चांदी की फिलीग्री या तारकशी कला या संबलपुरी वस्त्र और इक्कत प्रमुख है। पीएम स्मृति चिन्ह ई नीलामी का 8वां संस्करण ऑनलाइन जारी है और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रदर्शन से संबंधित केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की अगस्त महीने की 52वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष अगस्त में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने 2,42,000 से अधिक शिकायतों का निवारण किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. He highlighted the considerable improvement in rural infrastructure and noted that women across the country have also become increasingly self-reliant and economically empowered. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction yesterday with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vatnagar under Seva Sankalp Abhiyan. He emphasized the importance of social service, social reform and positive change. He said, Viksit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi highlighted that Vatnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colors of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colors of service. During the interaction, these Yatris shared their experiences with the Prime Minister. Mr. Modi also encouraged the Yatris to maintain a diary and record their experiences during the Yatra. Prime Minister Narendra Modi has highlighted the achievements of the Make in India initiative as it marks 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the initiative has led to more being made in India, more investment in India, and more exports

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई, और रात सुरमई में आज कुछ बातें नई पुरानी करते हैं। जब पुरानी बातें चली हैं तो हम चिट्ठियों की बात कर रहे हैं। संदूक में रखे पुराने पत्र समय के सबसे सच्चे दस्तावेज लगते हैं। उनमें किसी का घर का सुख है, किसी बिछड़े मन की कसक, किसी रिश्ते की चिंता और किसी प्रेम की चमक। बाहर दुनिया बदलती रही, कपड़े बदले, घर बदले, शहर बदले, और बदलते बदलते संवाद भी बदल गया। अब शब्द उंगलियों से निकलते हैं और पलक झपकते दूर चले जाते हैं, मगर संदूक में रखे पत्र आज भी अपनी रफ्तार से हमें देखते हैं, जैसे पूछ रहे हो क्या शब्दों को बचाने के लिए कभी किसी कागज की जरूरत पड़ेगी। और अगला गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज में, फिल्म का नाम है साजन।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

हर्ट्ज पर रात सुरमई। और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है विनोद राठौड़ और आशा भोसले की, फिल्म का नाम है चांदनी।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगा

आप सुन रहे हैं रात सुरमई और हम बातें कर रहे हैं कुछ नई पुरानी। अलमारी के सबसे नीचे रखा वो छोटा सा डब्बा आज फिर मिल गया। अलमारी के सबसे नीचे रखा वो छोटा सा डब्बा आज फिर मिल गया। अंदर कुछ सिक्के थे, दो पुराने टिकट और एक तस्वीर। तस्वीर देखते ही चेहरे पर मुस्कान आ गई। कितना बदल गया है सब कुछ। जब जेब में पैसे कम थे मगर घूमने की इच्छाएं बहुत थीं, एक टिकट ने पूरा सफर याद दिला दिया। एक तस्वीर ने पूरा दिन। हमारी जिंदगी भी कितनी अजीब है। कुछ साल बीत जाते हैं, फिर कोई छोटी सी चीज पूरा बीता हुआ मौसम एक पल में सामने रख देती है। और रात सुरमई में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है अप्रैल फूल, आवाज है लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई और साथ हूं मैं जयती। रात से पूछिए तो वो दिन का हिसाब नहीं मांगती, वो बस अगली सुबह तक का थोड़ा समय देती है। जो अच्छा रहा उसे दिल में रखिए, जो बिगड़ गया उसे हर पल दोहराने की जरूरत नहीं। कुछ फैसले सुबह की रोशनी में बेहतर समझ आते हैं, इसलिए हर सवाल का जवाब अभी इसी वक्त जरूरी नहीं। आज बस अपने मन को आराम दीजिए, कोई प्यारा सा गीत सुनिए और आने वाले कल की थोड़ी सी जगह बचा कर रखिए, क्योंकि जिंदगी हर सुबह एक नया पन्ना लेकर आती है और शायद यही अगली सुबह की कहानी आज रात से शुरू हो रही है। वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही

यानी 3 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो फिर मिलने के वादे के साथ जयति चाय की अनुमति, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सप्ताह में 3 बार चलने वाली ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण गंतव्यों को जोड़ेगी। मंत्रालय ने कहा कि ये नई ट्रेन सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। भारत की प्रमुख उर्वरक उत्पादक किसान सहकारी संस्था कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिबको ने वित्त वर्ष 2025-26 में 824 करोड़ रुपए से अधिक का कर पूर्व लाभ दर्ज किया है। नई दिल्ली में आयोजित क्रिबको की वार्षिक आम बैठक में प्रबंध निदेशक एसएस यादव ने कहा कि क्रिबको और उसकी सहायक कंपनियों ने उत्पादन और परिचालन दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं की पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यावहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज के दक्षिणी क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। इसमें स्कूली विद्यार्थियों, आईटीआई प्रशिक्षुओं, पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों तथा कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र शामिल हैं। ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इस वर्ष पीएम स्मृति चिन्ह ई नीलामी में प्रमुख आकर्षण बनी हुई है। इसमें राज्य की भक्ति परंपरा, हस्तशिल्प, चित्रकला, वस्त्र और साहित्य की विरासत को दर्शाने वाली कलाकृतियां शामिल है। नीलामी सूची में ओडिशा के कई पारंपरिक हस्तशिल्प भी शामिल है। इनमें कटक की चांदी की फिलिग्री या तारकशी कला तथा संबलपुरी वस्त्र और इक्कत प्रमुख है। पीएम स्मृति चिन्ह ई नीलामी का 8वां संस्करण ऑनलाइन जारी है और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में सर्दियों के दौरान डाक सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए अनूठी पहल शुरू की गई है। भारी बर्फबारी से सड़कें बंद होने पर अब ड्रोन के जरिए दूरदराज के डाकघरों तक डाक पहुंचाई जाएगी। इसका उद्देश्य भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों को निर्बाध डाक सेवा उपलब्ध कराना है। मंडी में सफल परीक्षण के बाद अब इस व्यवस्था को लाहौल की 11 और दूरदराज शाखाओं तक पहुंचाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी और लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश की चेतावनी के कारण कई जिलों में 12वीं कक्षा तक के स्कूल बंद रहेंगे। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में पिछले 24 घंटों में चक्रवाती स्थितियों के कारण भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश से सामान्य जनजीवन पूरी तरह प्रभावित होने के साथ साथ सड़क यातायात पर भी असर पड़ा है। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. He highlighted the considerable improvement in rural infrastructure and noted that women across the country have also become increasingly self-reliant and economically empowered. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction yesterday with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. He emphasized the importance of social service, social reform and positive change. He said Viksit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colors of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colors of service. During the interaction, these Yatris shared their experiences with the Prime Minister. Mr. Modi also urged the Yatris to maintain a diary and record their experiences during the Yatra. Prime Minister Narendra Modi has highlighted the achievements of the Make in India initiative as it marks 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the initiative has led to more being made in India, more investment in India and more exports from India. He said this transformation is visible across the sectors. The Prime Minister said Make in India is about creating infrastructure, enterprise and innovation that allows India to grow and prosper. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. on Sunday. It will be the 138th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR News website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast.

दोस्तों आपने ट्यून किया है एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हमराही। हमराही कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को वंदना चुक का प्यार भरा नमस्कार।

0: बोलो क्या, बोलो ना।
1: मो ईटक दाना, बीटक दाना, दाने ऊपर दाना, ईटक दाना।
2: इस गीत को सुनते हुए ऐसा लग रहा था कि हम बचपन में लौट गए और एक दूसरे के साथ, अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं। ये गीत था श्री 420 फिल्म से, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। हसरत जयपुरी की रचना थी और शंकर जयकिशन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे चलती का नाम गाड़ी फिल्म से, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ है। मजरु सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा है और धुन तैयार की है सचिन देव बर्मन ने।

और वैसे भी दोस्तों, अगर कोई किसी से मिलता है तो हालचाल तो पूछता ही है और कहते भी है ना, कैसे हैं आप? तो बड़ा अच्छा लगता है, चाहे हम हमारा हाल ठीक ना भी हो तो भी हम कहते हैं बढ़िया है, तो सुनने वाले को बहुत एनर्जी मिलती है। आपको बता देते हैं कि आपने ये गीत सुना चलती का नाम गाड़ी फिल्म से, और अगला गीत आप सुनेंगे हावड़ा ब्रिज फिल्म से, आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ, कमर जलालाबादी की रचना है और ओपी नैयर का संकेत।

0: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है हमरा ही, और इस कार्यक्रम में आप युगल गीत सुन रहे हैं अपनी दोस्त वंदना चौक के साथ FM गोल्ड चैनल पर 100.1 MHz पर।

और जब ऐसे में दिल चला जाता है तो पता ही नहीं चलता। फागुन फिल्म से गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी और आशा भोंसले का गाया हुआ। कमर जलालाबादी की रचना थी और ओपी नैयर का संकेत। अगला गीत आप सुनेंगे यहूदी फिल्म से, लता मंगेशकर और गीता दत्त की आवाज में। शैलेंद्र की रचना है और शंकर जयकिशन का संकेत। दोस्तों, इन गीतों को सुनते हुए आज बहुत ही पुराना दौर याद आ रहा होगा।

और अब अगला गीत आप सुनेंगे पेइंग गेस्ट फिल्म से, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और संगीत से संवारा है सचिन देव बर्मन ने, आवाज किशोर कुमार और आशा भोसले की है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

या अल्लाह दिल ले गए, और आपका भी किसी ने दिल ज़रूर लिया होगा। उजाला फिल्म से अभी आपने गीत सुना मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के बोल थे और धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने। अगला गीत आप सुनेंगे रानी रूपमती फिल्म से, गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है। भरत व्यास ने गीत को लिखा है और धुन तैयार की है SN त्रिपाठी ने।

और अब अगला गीत आप सुनेंगे काला पानी फिल्म से। ये गीत आशा भोंसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ है। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा है और धुन बनाई है SD बर्मन ने।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चलने तक होगी समझे
0: हाँ समझे।

दोस्तों, बहुत बार अपनों के आगे हम लोग हार मान लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे अपने हैं और उनको जिताने में यानी सामने वाले को जिताने में हमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है और हम भी यही चाहेंगे कि कई बार आप अपनों को मनाने के लिए अगर कोई आपसे रूठ जाता है तो उसे मनाने के लिए कई बार हाँ

0: हार भी जाए तो यहाँ हार मत सोचिएगा, क्योंकि रिश्ते को बरकरार रखने में ही भलाई होती है। तो इसलिए जहाँ कोई रूठे वो भी अपना, तो उसे मनाने की कोशिश कीजिए और झूठ मूठ हार जाने में कोई बुराई नहीं।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई,

और दोस्तों, ऐसी मुलाकातें ही हमारे लिए एक दूसरे के लिए कब प्यार बन जाती हैं पता ही नहीं चलता। और ये छोटी मुलाकातें ज़रूर आपसे भी हमें मिलवाएंगी और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको गीत कैसे लगते हैं सुनने पर। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा आज का हमराही कार्यक्रम अब संपन्न होता है। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा FM गोल्ड चैनल पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सप्ताह में 3 बार चलने वाली ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण गंतव्यों को जोड़ेगी। रेल मंत्रालय ने कहा कि नई ट्रेन सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। भारत की प्रमुख उर्वरक उत्पादक किसान सहकारी संस्था कृषि भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिबको ने वित्त वर्ष 2025-26 में 824 करोड़ रुपए से अधिक का कर पूर्व लाभ दर्ज किया है। नई दिल्ली में आयोजित क्रिबको की वार्षिक आम बैठक में प्रबंध निदेशक SS यादव ने कहा कि क्रिबको और उसकी सहायक कंपनियों ने उत्पादन और परिचालन दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यावहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी

आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इस वर्ष पीएम स्मृति चिन्ह ई नीलामी में प्रमुख आकर्षण बनी हुई है। इसमें राज्य की भक्ति परंपरा, हस्तशिल्प, चित्रकला, वस्त्र और साहित्य की विरासत को दर्शाने वाली कलाकृतियां शामिल है। नीलामी सूची में ओडिशा के कई पारंपरिक हस्तशिल्प भी शामिल है। इनमें कटक की चांदनी की फिलीग्री या तारकशी कला तथा संबलपुरी वस्त्र और इक्कत प्रमुख है। पीएम स्मृति चिन्ह ई नीलामी का 8वां संस्करण ऑनलाइन जारी है और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में सर्दियों के दौरान डाक सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए अनूठी पहल शुरू की गई है। भारी बर्फबारी से सड़कें बंद होने पर अब ड्रोन के जरिए दूर दराज के डाकघरों तक डाक पहुंचाई जाएगी। जापान एशिया खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एल गोवेन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हमारे दोस्तों ने ट्यून कर लिया है एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और कार्यक्रम अरुणिमा, इस कार्यक्रम में सभी दोस्तों को वंदना चुक की सुप्रभात और गीतों के साथ स्वागत है आप सभी का।

छोटी सी बात फिल्म से ये गीत था येसुदास और आशा भोसले का गाया हुआ, योगेश का लिखा गीत था और सलिल चौधरी की बनाई हुई धुन। अगला गीत आप सुनेंगे आस का पंछी फिल्म से, सुबीर सेन का गाया हुआ है। हसरत जयपुरी ने गीत को लिखा है और संगीत तैयार किया है शंकर जयकिशन ने।

के दिन मुकद्दर आएगा झूमता सवेरा जीवन में रोशनी को लेकर दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर

दोस्तों, इंसान बहुत सारी आस यानी उम्मीदें जीवन में लगा के रखता है और जीवन भर उन उम्मीदों को पूरा करने में लग जाता है। फिर जो पूरी हो जाती हैं वही उसे खुशी महसूस होती है और फिर और उम्मीदें जगती रहती हैं।

दोस्तों, हम तो यही चाहते हैं कि आपकी उमंगें भी ऐसे ही पतंग की तरह बहुत ऊंची उड़ती जाएं और उन उमंगों को आप जरूर पूरा करें। भाभी फिल्म से ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ, राजेंद्र कृष्ण की रचना थी और चित्रगुप्त का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे लावारिस फिल्म से, अनजान के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत, आवाज किशोर कुमार की।

दोस्तों, ये पंक्तियां इंसान के मन में तब आती हैं जब वो हर तरफ से निराश और हताश हो जाता है और अपनी डोर ऊपर वाले को सौंप देता है।

मशाल फिल्म से ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। जावेद अख्तर ने गीत को लिखा था और धुन तैयार की थी हृदयनाथ मंगेशकर ने। जमाने को दिखाना है, लेकिन क्या दिखाना है, सुन लेते हैं इस गीत के माध्यम से। पद्मिनी कोल्हापुरी, ऋषि कपूर, मोहम्मद रफी, आशा भोसले का गाया ये गीत, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और आर डी बर्मन का संगीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक

भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

रचना थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे पिया का घर फिल्म से, किशोर कुमार का गाया हुआ, आनंद बख्शी की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियां हैं, 200 वाक्य में ही ये जीवन उतार चढ़ाव का ही तो नाम है। और जिसने जिंदगी को हंसते हुए बिता लिया, वो सारी मुश्किलों से मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ जाता है।

दोस्तों, जैसे जैसे सुबह होती है, सूरज की किरणें दिखती हैं और सूर्य की लालिमा देखती है, वैसे ही हमारे अंदर सकारात्मकता भी आने लगती है और इस जीवन को भी हमें सकारात्मक रूप से ही जीना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी ना जाने कितनी है, लेकिन हम अपनी जिंदगी में अपने रिश्तों से अच्छे से मिलें जब भी मिलें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचानकर नवाचार के माध्यम से व्यवहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। इसमें स्कूली विद्यार्थियों, ITI प्रशिक्षुओं, पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों तथा कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र शामिल हैं। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर समूचे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सप्ताह में 3 बार चलने वाली ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी। रेल मंत्रालय ने कहा कि ये नई रेल सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का एक और विकल्प प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। भारत की प्रमुख उर्वरक उत्पादक किसान सहकारी संस्था कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिबको ने वित्त वर्ष 2025-26 में 824 करोड़ रुपए से अधिक का कर पूर्व लाभ दर्ज किया है। नई दिल्ली में आयोजित क्रिबको की वार्षिक आम बैठक में प्रबंध निदेशक SS यादव ने कहा कि क्रिबको और उसकी सहायक कंपनियों ने उत्पादन और परिचालन दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखा है। ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी चीजें PM स्मृति चिन्ह ई नीलामी में प्रमुख आकर्षण बनी हुई हैं। इसमें राज्य की भक्ति परंपरा, हस्तशिल्प, चित्र

नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल से और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भोर सुहानी। भोर सुहानी कार्यक्रम में गीतों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चौक।

महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में आपने ये भक्ति रचना सुनी। संतोष आनंद की लिखी रचना थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अगली रचना इम्तिहान फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी ने इस रचना को लिखा है और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

दोस्तों, जब बरसात आती है तो कोई बरसात में आनंद की अनुभूति कर रहा होता है तो वहीं को ही सैलाब के पास बैठा हुआ व्यक्ति वहां से निकलने का रास्ता सोच

सोच रहा होता है तो जिंदगी ऐसे ही चलती जाती है, लेकिन हमें रुकना नहीं होता क्योंकि दुख और सुख दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं।

0: ये गीत आपने सुना भक्ति में शक्ति फिल्म से मोहम्मद रफी का गाया हुआ। इंद्रजीत सिंह तुलसी की रचना थी और सोनिक ओमी का संगीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
0: भोर सुहानी कार्यक्रम में आप गीत सुन रहे हैं अपनी दोस्त वंदना चुक के साथ।